0: बरसों बाद यहां से मैं निकली हूं। ऐसा लगता है कि वो किसी और सदी की बात थी।
1: शायद उन दिनों की बात होगी जब ये इमारत अभी उजड़ी नहीं थी।
0: हाँ, पिछले किसी जन्म की बात ही तो लगती है।
1: एक काम करें, जब तक तुम यहां हो रोज घर पे खाने के लिए तो आया ही करोगे, खाने के बाद घूमने निकल आया करेंगे। कम से कम ये इमारत कुछ दिनों के लिए तो बस जाएगी। तुम्हारी शॉल कहाँ है?
0: भूल गई। ना ना,
1: तुम नहीं बदलोगी।

0: सुनार जी, ये जो फूलों की बेलें नजर आती हैं ना, दरअसल ये बेलें नहीं है, अरबी में आयतें लिखी हैं। इसे दिन के वक्त देखना चाहिए, बिल्कुल साफ नजर आती है। दिन के वक्त ये सारा पानी से भरा रहता है। दिन के वक्त जब ये गुब्बारे,
1: कहाँ आ पाऊंगी मैं दिन में?
0: ये जो चांद है ना, इसे रात में देखना, ये दिन में नहीं निकलता।
1: ये तो रोज निकलता होगा,
0: लेकिन बीच में अमावस आ जाती है। वैसे तो अमावस 15 दिन की होती है, लेकिन इस बार
1: 9 बरस लंबी थी ना।

0: हेलो एंड वेलकम दोस्तों, मैं आपका होस्ट एंड दोस्त आरजे शब्बीर स्वागत करता हूँ आपका क से कभी। जैसे कि आपने पहले एपिसोड में सुना कि किस तरीके से हमारे मित्र अभिजीत अयंग और राहुल सफर जी ने अपने कविता की जर्नी को, अपनी कवि की जर्नी को इस क से कभी के माध्यम से सुनाया, हमें बताया। तो आज हमारे साथ एक और इस हार में जुड़ने एक और मोती आ गए हैं, नाम है मोनिस वारसी। मोनिस जी अपने उम्र से बहुत ज्यादा गहरी बातें कह देते हैं, बहुत आसान और बहुत सहज लहज, सहज तरीके से। लहजा बहुत सिंपल सा पर बातें इतनी डीप और इतनी मीनिंगफुल कि शायद ये बातें करें तो हमें सोचने में इतना वक्त लग जाए कि क्या बात कही थी और क्या मतलब निकला, और वो प्रोसेस होने में और वो प्रोसेस होके रिजल्ट आने में इतना समय बीत जाता है कि दूसरी बात कैच करना भी बहुत मुश्किल हो जाता है। तो आज का जो इंटरव्यू होगा ये बहुत ज्यादा उन सारी बातों को उजागर करेगा जिसमें शायद हम, जिस बारे में शायद हम सोचते नहीं है या जिस पहलू तक हमने जाने की कभी कोशिश नहीं की। तो मोनिस जी स्वागत है आपका कैसे कभी में। मोनिस जी आपसे सबसे पहला सवाल ये है कि आपने लिखना कब शुरू किया?
1: लिखना एज इन एकदम से लिखता तो मैं शुरू से ही था। कभी नज़्में लिख दी, कभी एक लाइन लिख दिया, कभी कोई वर्ड लिख दिया। जैसे जो सीड है वो तो हमेशा पड़ा ही रहता है ना इंसान के अंदर।
0: करेक्ट।
1: जिस चीज का है उसे पेड़ बनने में टाइम लगता है। तो मैंने प्रॉपर लिखना 2019 में शुरू किया। 2019 में कुछ ऐसा हुआ जिंदगी में जिसने मुझे लिखने के लिए उत्साहित किया कि लिखा जाए। और हर चीज के लिए कहते नहीं एक स्पार्क की जरूरत होती है किसी चीज को स्टार्ट करने के लिए, तो वो स्पार्क मेरी जिंदगी में आया किसी इंसान के तौर पर और मैंने लिखना चालू किया। फिर रुका नहीं, कलम लिखते गया।
0: तो जब आपकी जिंदगी में वो स्पार्क आया तो उस वक्त क्या महसूस हुआ जिसने आपको किसी और मोड़ पर या किसी और मोड़ को चूज ना करते हुए सिर्फ लिखने की ओर मोड़ा?
1: लोग शब्द हम कलम का सहारा लेते ही इसीलिए हैं कि उसे डिफाइन नहीं किया जा सकता।
0: करेक्ट।
1: कि हम क्या फील कर रहे हैं, वो आदमी हमें मिला है, वो इंसान हमें मिला तो हम कैसा फील कर रहे हैं।
0: करेक्ट।
1: उस चीज को बाइकआउट करने के लिए या बाईपास करने के लिए हम कलम उठाते हैं। हाँ। शायरों में यही होता है कि हम जो फील कर रहे होते हैं वो नहीं बता सकते, तो जो पॉसिबल चीज है जो जो एक उस फीलिंग को टच कर सकती है उस चीज को आपको, ये बहुत अच्छे से मालूम है क्योंकि आप भी लोगों को शायद ना पता, मुझे मालूम है कि आप भी लिखते हैं, तो उस फीलिंग को टच करने की जो सबसे इजी या उसके सबसे प्रॉक्सिमिटी में जो चीज जा सकती है वो शेर व शायरी मेरे हिसाब से। तो इसलिए मैंने ट्राई किया कि जो फील कर रहा हूँ वो तो शायद कोई ना जान पाए, शायद मुझे भी वो चीज एक्सप्लोर करने में टाइम लगे या हो सकता है मैं भी कभी ना जानूं, मगर हाँ जितना हो सकता है उतना लिखते हैं तो निकलते ही। और आपको मालूम है कि प्रेम बहुत ही पाक और बहुत ही पवित्र चीज है, तो उसकी कोई
0: तुलना नहीं है।
1: हाँ, तुलना नहीं है, कोई उसका वर्बल कोई डेफिनेशन नहीं है मेरे हिसाब से। जो हम कर पाते हैं बस लिख देते हैं कुछ।
0: तो जैसे कि आपने कहा कि कभी एक कविता लिख दी, कभी एक पैराग्राफ लिख दिया या कभी एक शब्द लिख दिया, तो कभी कोई एक ऐसा शब्द लिखा है जो आज तक वो शब्द ही रहा है, मतलब फिर उसके आगे कभी कुछ लिखा ही नहीं?
1: मेरा मैंने लिखा था एक बार मेरा।
0: हाँ।
1: अब वो मुझे पर्सनली बहुत ज्यादा ही पसंद है, जो उनकी मतलब डिवोशन है, जो उनका पूरा आत्मसमर्पण है, जो वो मुझे बहुत ही प्रभावित करता है बहुत ही ज्यादा। एक होता है कि किसी को पसंद करना, एक होता है किसी को हर दर्जे तक पसंद करना। तो मैंने एक ही सबसे पहला ही मैंने लिखा था मीरा। एक शब्द मेरी डायरी में अभी तक लिखा पड़ा हुआ मीरा, तो वही मुझे अभी तक फिलहाल तो वही याद आ रहा है कि एक ही शब्द से अगर काम चल जाए, क्योंकि वो एक शब्द है उसको खोलेंगे तो कम से कम 1000 किताबें आप लिख सकते हैं मीरा। जो उनकी मोहब्बत है, जो उनका इश्क है कृष्ण को लेके, उस मोहब्बत को अगर टटोलने जाएंगे तो बहुत ही ज्यादा ऐसा लगेगा कि किसी और डायमेंशन में आ गए हैं।
0: करेक्ट।
1: डायमेंशन शायद इश्क का ही है।
0: और वो शायद वो डायमेंशन खुली आंखों से देखा भी नहीं जाएगा।
1: वो तो भाई आशिक के लिए आशिक की बात है।
0: तो फिर मीरा को बाद में आपने पढ़ा, आपने वो एक वर्ड लिख कर छोड़ दिया, फिर उस शख्स को जानने की आपने कोशिश की कि क्या था क्या नहीं, क्या पढ़ा फिर मीरा के बारे में?
1: मीरा के बारे में मैंने ज्यादा नहीं पढ़ा क्योंकि मुझे कुछ इतना ये इस चीज को मैं जानता हूँ कि उनकी जो उनका जो इश्क है वो जिस घर से आती थी उसमें क्या हुआ, फिर कृष्ण के जो प्रति उनका जो प्रेम था वो कितना किस दर्जे तक गया ये मुझे मालूम है कि खत्म कर दिया उन्होंने अपने आप को, ये मुझे मालूम है। और काशी के लिए जाना इतने का मुझे अच्छा लगा ये चीज, और वो मुझे हमेशा से पसंद है। मैंने क्लास 8 में उनके बारे में थोड़ा बहुत पढ़ा तभी से वो मेरे मन में।
0: कितना खूबसूरत एहसास रहा होगा अगर जब हम मीरा को पढ़ते हम जानते हैं कि मीरा का सिर्फ श्री कृष्ण के लिए समर्पण था, उनकी कोई इच्छाएं नहीं थी कि इन रिटर्न मुझे उनसे कुछ चाहिए, उनका सिर्फ यही था कि बस मैं जो कर रही हूँ उससे मेरे भगवान मेरे प्रीतम मैं जिनसे प्रेम करती हूँ या मैं जिनके लिए पूरी समर्पित हूँ वो बस खाली इस चीज को जान ले। लेकिन आजकल ऐसा है कि दुनिया पूरी शो ऑफ के इस चक्कर गई है, मतलब प्रेम, हाँ प्रेम, प्रेम को समझती है कि शो ऑफ है, मतलब जब तक आप गिफ्ट्स ना दे दे, जब तक आप कुछ भेंट ना दे दे, कुछ दे ना दे, इसको लोग प्यार समझते हैं। इस पे आप क्या कहेंगे?
1: मैंने इसी को मद्देनजर, मतलब इसी को नजर में रखते हुए एक शेर लिखा था कि तेरे इश्क के शहर को जिस्म का सहारा जरूरी है क्या,
0: तेरे इश्क के शहर को जिस्म का सहारा जरूरी है क्या,
1: अगर ये बात है असरार तो तेरा शहर कभी महसूस है।
0: वाह वाह वाह वाह वाह वाह।
1: तो मैंने मीरा को नजर में रख के ये शेर लिखा था मैंने कि जब सेल्फलेस चीजें हैं ये किसी भी सेंचुरी की बात नहीं, ये आज से 1000 साल भी कोई इश्क करेगा तो इसी फेज में, वो दरवाजा सेम, इश्क का दरवाजा उतना ही बड़ा है, उतना ही सेम है, उसी जगह पे वो शिफ्ट नहीं होता है, वो वहीं पे जो भी आदमी इश्क करेगा चाहे वो मीरा हो चाहे सदीर हो चाहे मनीष उसको जाना उसी दरवाजे से तो वो फील कर सकता है। तो मैंने ये लिखा मीरा जी को
0: मद्देनजर रखते हुए
1: कि किसी चीज की जरूरत नहीं।
0: मैं भी मीरा इस कैरेक्टर से मैं भी बहुत ज़्यादा इंस्पायर हूँ, ये कैरेक्टर मुझे इतना इंस्पायर करता है कि मैंने लिखा कि सब प्यार मोहब्बत मीरा है, रब की भी चाहत मीरा है, आशिक ने लिखा हर प्रेम का खत मीरा है, सब पंछी तारे मीरा है, सब पंछी सारे मीरा है, गगन में तारे मीरा है, जो जीत गए वो कृष्ण हुए, जो हार गए वो मीरा है। लेकिन इश्क में यही है जो हार जाता है वही जीत जाता है, तो इसलिए मेरा ऐसा मानना है कि मीरा ने हार कर जो पा लिया वो शायद लोग जीत कर भी नहीं पा सकते अपनी जिंदगी में। एक उनका डिवोशन, एक उनका समर्पण इतना गहरा लगता है मुझे कि अगर आप मीरा के पैरेलल कुछ वर्ड कहना चाहे तो क्या कहेंगे? प्रेम को छोड़कर
1: मैं कहूँगा कि जो मुझे सबसे बेहतर उनका ये लगता है, जैसे आपने कहा कि सब हार गए
0: वो जो जीत गए वो कृष्ण में, जो हार गए वो
1: किसी, मतलब आपने जो लिखा शायद मैं मतलब बता दूं लोगों को कि हार गए का मतलब ये थोड़ी है कि कोई जंग चल रही थी हार गए,
0: करेक्ट,
1: उन्होंने अपने सेल्फ को हरा दिया, बोले तू कुछ है ही नहीं,
0: करेक्ट,
1: तितर बितर,
0: करेक्ट,
1: कोई मतलब नहीं है तेरा, क्या है मेरा बोनस कैश और बिल कैश कुछ नहीं, तो ये हार वो जीत से बेहतर है।
0: सही बात है, सही,
1: तो ये हार बहुत ही मतलब बहुत ही पवित्र है ये हार कि किसी के लिए हम हार जाए, प्रेम उसी में है जहाँ पे सेटिस्फेक्शन हो हारने के बाद भी, तो मेरा वो सेटिस्फेक्शन है जब कृष्ण के दर्शन हो गए तो क्या है?
0: वही एक दर्शन में सारी दुनिया छुपी है, देखा जाए तो सारी दुनिया उसी एक दर्शन में। तो मेरा एक सवाल था कि कभी आपने ये सोचा है कि एक पैरेलल वर्ल्ड ऐसा भी होगा, एक डायमेंशन ऐसा भी होगा जहां शायद कृष्ण मीरा के होंगे, कभी ऐसा सोचा है कि एक पैरेलल वर्ल्ड ऐसा होगा?
1: क्यों नहीं होगा, हम और आप एक दूसरे के हो सकते हैं किसी न किसी दौर में, किसी न किसी जमाने में, अभी दुनिया में इतनी नफरतें हम और आप बैठे बात कर रहे हैं और इस बारे में इस टॉपिक पे बात कर रहे हैं जिसका मतलब कोई एक्सपेक्टेशन नहीं किसी को कि कोई दो लोग बैठ के आज के दौर में मीरा की बात करेंगे, तो ये तो बहुत ही ज्यादा संभव है। और हमारे यहाँ तो कहा जाता है कि मल्टीवर्स का कॉन्सेप्ट
0: है,
1: तो किसी न किसी वर्ल्ड में तो
0: किसी
1: वर्ल्ड में तो कृष्ण भी मीरा के आशिक होंगे।
0: हाँ ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है,
1: अब उसके बारे में हमें
0: वो तो जब जब इश्क बढ़कर डिवोशन के लेवल पे चले जाए तभी ये सब पॉसिबल।
1: इसका रियल शब्द भाई ऐसा है कि वहाँ पे वो खुद ही मल्टीवर्स है, वो उसमें कभी आदमी बहुत दुख से भर जाता है, कभी बहुत सुख से भर जाता है, कभी कुछ हो जाता है, कभी कुछ हो जाता है, हर पल ऐसे, कभी बहुत ऊपर तो कभी बहुत नीचे, कभी बहुत ऊपर तो कभी बहुत नीचे, चलते रहता है। लोगों को लगेगा कि अब अरे पहले तो महबूब की पहले तो मैं तारीफ कर रहा था,
0: अब बुराई कर रहा है। हाँ,
1: तो ये तो चलते रहेगा। ये मतलब ऐसी चीज है कि ये जैसे कुछ भी हो, कुछ अब जैसे मैंने लिखा कि तेरे इश्क के शहर को जिस्म का सहारा जरूरी है, फिर मैंने एक चीज और लिखी, अब तो मुड़ के देखने में भी तकलीफ है तुझे, तो बता तेरे वादों का एतबार करूं या रहने दूं, हजार बात है दिल में तेरी उल्फत की कसम, समझ में ये नहीं आता क्या करूं क्या रहने दूं।
0: हाँ हाँ हाँ हाँ, वाह वाह वाह, फिर से मुकर्रर इरशाद, बहुत अच्छा शेर, वाह वाह वाह।
1: अब तो मुड़ के देखने में भी
0: तकलीफ है
1: तुझे, तो बता तेरे वादों का एतबार करूं या रहने दूं, हजार बात है दिल में तेरी उल्फत की कसम, समझ में ये नहीं आता कि क्या करूं और क्या रहने।
0: वाह वाह वाह,
1: ये भी एक रेंज है। मैं ये कहता हूँ कि इश्क कोई किसी पेडेस्टल पे हमें तौलना नहीं
0: है,
1: आशिक कभी ऊपर भी रहेगा कभी
0: नीचे भी रहेगा,
1: वो मिजाज की बात है। ऐसे ऐसे अशआर आदमी लिख देता है, लगेगा कि ये तो नफरत करता है, मगर महबूब से कोई नफरत नहीं कर सकता,
0: महबूब बनाएंगे प्यार को,
1: महबूब को गाली नहीं दे सकता। किसी भी हाल में रखे वो ठीक है, फिर वो वहाँ पे जो सेटिस्फेक्शन लेवल है, वो वहाँ पे जो सरेंडर जो लेवल है वो अलग होता है। तो इसलिए मैंने मीरा से ही आपको पहले अवगत कराया भी,
0: लेकिन यही एक चीज है। आज से अगर आप 30-40 साल पहले चले जाओ और अभी आ जाओ, पहले लोग एक्सेप्टेंस में ज्यादा बिलीव करते थे, अब फोर्सफुली एक्सेप्टेंस में बिलीव करने लोग लगे हैं। कि पहले एक्सेप्टेंस ये होता कि अगर कोई कह देता कि नहीं है मुझे आपके प्रति प्रेम नहीं है, या मैं उस नजरिए से आपको नहीं देखता हूँ, तो लोग समझ जाते कि ठीक है आप नहीं देखते हो मैं देखता हूँ, तो वो मेरा एक तरफा मामला है आपके प्रति। लेकिन अभी लोग वैसे नहीं करते, अब ऐसा हो गया कि नहीं मुझे चाहिए तो चाहिए, तो इस पर आपकी क्या राय है?
1: दुनिया में 90% शायरों का एक तरफा ही मामला होता है, और ये हमेशा चलता रहेगा। एक तरफा प्यार की सबसे बड़ी खूबसूरती है ये कि उसको, उस इंसान को, चाहे वो महिला हो या पुरुष हो, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। कि पहली बात तो मैं ये क्लियर कर दूं कि जेंडर इश्क का है
0: नहीं, करेक्ट करेक्ट करेक्ट, एब्सोल्युटली
1: इश्क का कोई जेंडर नहीं है, मोहब्बत का कोई जेंडर नहीं है, वो किसी से भी हो सकता है, कहीं भी हो सकता है, कभी भी हो सकता है। तो हम लोग जो बात करते हैं कि शायर जितने भी हुए हैं उनका कहीं ना कहीं एक कांटा फंसा होता है जो गले से नहीं उतरता है किसी और के। तो ये जो आप कह रहे हैं कि, तो मैं मतलब इसका जवाब ऐसे ही देना चाहूंगा कि एक तरफा जो होता है यही सबसे, मुझे सबसे मतलब प्योरेस्ट फॉर्म में जो आदमी कर सकता है कि भाई मुझे नहीं जरूरत तेरी, फिर जस्टिफाई कई सारी चीजें हो जाती है, कई सारी चीजें कि भाई तेरे हंसने से भी अगर मुझे तकलीफ थी, तेरे रोने से भी तकलीफ थी, या तेरे ये बात कहने से मुझे तकलीफ थी, चल वो भी हटा दिया, मैं अकेले कमरे में पड़ा हूँ तेरे से इश्क कर रहा हूँ।
0: वाह,
1: और वो इश्क पहुंचता है। मतलब हम सुनते आते हैं कि आप किसी को याद कर रहे हैं तो सामने वाला भी ज्यादा प्रोबेबिलिटी है कि वो भी आपको याद कर रहा हो, तो ऐसे ही आदमी कर लेता है, इश्क कर लेता है, और इसमें कोई मतलब बहुत ज्यादा बड़ी बात नहीं है। मगर आज पर जो है, आज हम देखते हैं कि सिर्फ और सिर्फ जो चीजें मतलब जिस्मों तक ही सीमित है, वो चीज थोड़ा मुझे अटपटा लगता है कि पता नहीं।
0: जैसे अभी आपने कहा कि चलो ये हटा दिया, वो हटा दिया, खुद को कमरे में बंद कर लिया, सब कुछ,
1: फिर भी
0: ऐसे ही एक शायर थे मुझे बहुत पसंद है, जॉन एलिया। जॉन एलिया ने खुद को इतना तबाह कर लिया कि पढ़ते हैं तो पता चलता है उनको, या कुछ शायरों से सुना भी है, कि कई सालों तक खुद को एक कमरे में बंद कर लिया था उन्होंने, ना किसी मुशायरे में जाते थे, ना किसी से मिलते थे, ना कुछ मिलना जुलना होता था। फिर उनके दोस्त थे सलीम जाफरी, वो आए, कमरा खुला, देखे तो जॉन साहब के बाल बहुत बड़े, लंबे लंबे, दांत गंदे हो चुके, बदन से बदबू आ रही है, इतना खुद को दबा कर लिया। तो शायर इस वक्त क्या सोचता होगा, मतलब खुद को जब बंद कर लेता है सारी दुनिया से, सब मतलब रिश्ते नाते तोड़ दिया, नहीं मुझे दुनिया ही नहीं देखनी है, और वो आके खाली कमरा बंद कर दिए है, 8-10 किताबें है, 4 दीवार है, जिसको 24 घंटा देख रहा है आदमी।
1: तो साहब ने इसका जवाब खुद ही दिया, एक अपने शेर में दिया इसका जवाब, कि कहते हैं क्या कहा मुझसे मिलने आए हो, क्या कहा मुझसे मिलने आए हो, बैठो बुला के
0: लाता हूँ। वाह वाह वाह वाह वाह वाह।
1: तो ये उन्होंने खुद कह दिया, ये अब इसको मैं इलैबोरेट करूं या कोई भी दुनिया का आदमी इलैबोरेट करेगा बहुत ही ज्यादा समय जाएगा इसमें, कि एक शख्स है जो अपने आप को इस हद तक तबाह कर चुका है कि सिर्फ और सिर्फ महबूब है उसके।
0: वही उनका शेर है ना, मैंने खुद को इतना तबाह कर लिया और मलाल भी नहीं,
1: मलाल भी नहीं,
0: मलाल भी नहीं है।
1: और मलाल इसीलिए इसको आदमी दूसरे, मतलब आज के लोग शायद दूसरे तरीके से समझे, मतलब मेरा ग्लास सिर्फ इश्क है, मेरा मैं इश्क के चश्मे से ही चीजों को देखता हूँ। तो जो मिर्जा साहब हो या कोई भी हो, तो ये जो इन्होंने कहा है कि क्या कहा मुझसे मिलने आया बैठो बुला के लाता, तो ये वही बात है कि मैं तो हूँ ही नहीं खत्म। जैसे हम लोग एक वाक्य एक थोड़ा फोकलोर हम लोग सुनते हैं कि लैला से मिलने मजनू गए, तो मजनू ने दरवाजा खटखटाया तो लैला ने पूछा कौन, तो बोले कैस, तो बोले जाओ। फिर दोबारा आए कुछ दिन के बाद, कुछ महीनों के बाद, फिर उन्होंने दरवाजा खटखटाया, फिर लैला ने पूछा कि कौन, बोले कैस, बोले वापस जाओ। फिर तीसरी बार जब आए वो तो पूछे कौन, तो बोले पता नहीं। तब लैला ने दरवाजा खोला और गले मिली कि ये मैं ये चाह रही थी, तू कौन, मैं कौन हूँ।
0: वाह वाह वाह वाह।
1: तो मैं कौन होते इश्क में, इश्क में यूनियन का नाम इश्क है।
0: हाँ, किसी एक पर्टिकुलर पर्सन तक सीमित, एक हो जाना,
1: दो लोग एक। जैसे हम लोग अभी देखते हैं विवाह, कहते हैं दो रूहों का मिलन है, दो मतलब आत्माओं का मिलन, ये हल्की बात नहीं, ये हमें मतलब हमें बचपन से हिंट दिए जाते हैं कि इश्क ऐसा होता है, चाहे वो मुस्लिम कल्चर हो चाहे हिंदू कल्चर हो कुछ भी हो, हमें बचपन से हिंट दिए जाते हैं कि इसका ये, इसका ये, इसका वो। तो एक हो जाना, मीरा और कृष्ण में कुछ फर्क नहीं बचा। एक वाक्य और बताता हूँ आपको कि एक हो जाना क्या क्या होता है। कृष्ण भगवान जा रहे थे जंग पे महाभारत से लड़ने के लिए, बात है, तो राधा ने कहा कि कम से कम आप मुझे अपना लीजिए, पता नहीं क्या हो जाए जंग में। मैंने ऐसा सुना है और मेरे एक टीचर को बताया करते थे। तो कृष्ण ने कहा आप अपनी आंख बंद करिए राधा से, और कृष्ण पलटे और बोले कि आप खोलो, तो राधा ने देखा कि सामने एक और राधा
0: खड़ी है। हाँ,
1: किससे किससे कहूँ, तू ही तो है, मैं ही तो हूँ। तो इस लेवल का अगर यूनियन है जो कि मतलब अभी तो
0: उसके बारे में सोचना भी
1: उम्मीद नहीं कर सकते, और जो कि गलत नहीं है जिसको जितना देखो। मैंने बहुत ही अच्छे एक इंसान सुना था कि जिसका जितनी फोकस है, जितनी लाइट है उसको उतना ही दिखेगा।
0: करेक्ट, करेक्ट।
1: एक फोकस अगर 10 mm का है तो उसके 10 mm का एरिया ही दिखेगा। एक LED का फोकस अगर 1 km तक है तो उसको 1 किलोमीटर का ही रेडियस उसको दिखेगा। तो इसमें उनकी गलती नहीं, उनको बताया दूसरे तरीके से गया, उनको समझाया दूसरे तरीके से गया।
0: करेक्ट, करेक्ट। और ये ऐसा भी है ना कि युग युग की बात है कि ऐसा युग आना ही था जो अब हम देख रहे हैं, ऐसा युग आना है, और शायद इसके बाद और एक युग आएगा जो शायद इससे बुरा हो, है ना। तो ये सब युग आने ही वाले हैं, तो ये युग में ये होना था। तो चलो, हम खुश नसीब है कि जो पिछले युग में या उससे पिछले युग में जो हुआ है वो हम डिस्कस कर रहे हैं, और वो हमारे रूट्स में अभी भी है, और हम जो युग देख रहे हैं और हम आगे का भी सोच सकते हैं कि ऐसा भी युग आ सकता है। अब एक सवाल कि कोई एक ऐसी कविता जो लिखनी शुरू की, पूरी भी हुई, फिर उसे काट दिया, फिर उसे लिखा, फिर काट दिया, ऐसा कितने बार हुआ है?
1: मैं मतलब लिख के काटने वाली तो बात जो है बहुत सही है।
0: हाँ।
1: आदमी कभी कभी मैं जैसे मैं लखनऊ से हूँ तो मेरी उर्दू थोड़ी अच्छी ग्रिप है उर्दू पे, मगर उतनी भी अच्छी नहीं। तो कम से कम सैकड़ों बार ये होता है कि लाइन लिखे हुआ जो फील कर रहे थे वो पोर्ट्रे नहीं कर पाए पेज पे, काट दिए। फिर एक दिन बैठे कि यार वो लिख देता हूँ, काट दिए। कई बार हुआ, कम से कम 100-200 शेर तो आधे मतलब एक एक लाइन के पड़े,
0: सिर्फ एक मिसरा लिखा है। हाँ। उला लिखा, सानी नहीं मिला, सानी लिख दिया, उला नहीं मिला।
1: क्योंकि मैं मतलब यही सोच के, ये नहीं कि मेरे पास लफ्ज नहीं, मेरे पास वाकई में मतलब लफ्ज नहीं है कि मैं जो फील कर रहा हूँ वो क्या जस्टिफाई हो पाएंगे। तो मैं बहुत ही केयरफुल होकर कोई भी चीज लिखता हूँ, ऐसे मतलब ये नहीं कि कुछ भी लिख दूं लिखने के लिए। तो बहुत बार हुआ
0: ऐसा। राइटर्स ब्लॉक ऐसा कितना टाइम चलता है, मतलब बहुत महीने हो गए, दिन गुजर गए, साल हो गया, कुछ लिखाएंगे, ऐसा हुआ है?
1: बहुत बार होता है, बहुत ऐसा होता है जब जैसे और इसमें किसी की गलती नहीं कि इसमें मतलब ये ऐसे ही है कि जैसे पानी बह रहा है, किसी ने नलका रोक दिया, फिर अगर तुम कॉन्शियस हो नलका खोल दिया पानी गिरेगा, तो कुछ ऐसा ही है। मतलब मैं इसको ऐसा एकदम पर्टिकुलरली वर्ड में शायद मैं डिफाइन ना कर पाऊँ। आपका सवाल बहुत प्यारा है, मगर शायद ऐसे ही है कुछ कि ब्लॉग तो चलता है मेरा, तो ऐसा है कि किसी का भी है 15-15, 20-20 दिन कुछ नहीं लिखता।
0: हाँ, दो तीन छह महीने मैंने नहीं लिखा।
1: तो ऐसे ही होता है हम लोग के साथ, होता है। ये इसलिए नहीं होता कि हमारा कुछ कंटेंट खत्म हो गया है, हम मतलब भूल गए लिखना, ऐसा कुछ नहीं होता, बस नहीं मन करता है। और लिखना तभी मजा आता है कि भाई वो जब दिल से निकले चीजें, तो वो शूटिंग भी दिल से है।
0: जब कुछ आप पे तारी हो रहा हो, जब आप पे कुछ नाजिल हो रहा हो, जब आपने कुछ मांगा नहीं और ऊपर वाले ने आपने देना भर भर भर भर भर भर देना शुरू किया, और आप बैठे आपने यार ये आ रही है, आ रही है, आ रही है, और हो गई पूरी कविता हो गई एक मिनट के भीतर पूरी।
1: हाँ,
0: फिर करेक्शन, फिर सोचते हैं। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि एक लिखी गई बस उसमें करेक्शन भी नहीं करना। लेकिन फिर वो कविता का ऐसा भी मतलब होता है कि वो सुना भी नहीं पाते, फिर वो इंसान अपने एकांत में उसको पढ़ता है। जब एक कविता ऐसी लिखी जाती है हमसे कई बार कि वो हम सिर्फ एकांत में पढ़ते हैं, उसे दुनिया के लिए नहीं लिखते हैं। मतलब वो एक ब्रह्मास्त्र दिया होता है ऊपर वाले ने आपको। हाँ, कि आप परेशान है तो पढ़ रहे हो, खुश हो तो पढ़ रहे हो, कुछ मिला है तो पढ़ रहे हो, कुछ खोया है तो पढ़ रहे हो। तो ऐसा कभी कुछ हुआ है?
1: ऐसा होता है, और ऐसा होना भी चाहिए, और ऐसा होता है। जैसे एक जैसे जिस्म की एक खुराक है, हम खाना खाते हैं, पानी पीते हैं, वैसे जो आपका इश्क है, जो आपका आपकी जो रूह है, उसकी भी एक गिजा है। तो आप उसे वो बस पूरा करने की कोशिश करते हैं कि मैं किसी तरीके से, जब वो भूख लगती है कि यार आज इश्क बहुत मजा रहा है, तो वो पढ़ लिए या वो लिख दिए, कुछ ऐसा लिख दिए कि पढ़ लिए, तो होता है ऐसा। और वो चीज इतनी प्राइवेट होती है कि कुछ शेयर होते हैं,
0: कुछ शेयर बहुत, हाँ, वो मतलब आप सुना ही नहीं सकते हो किसी को,
1: तो वो होते हैं। वो फिर उसमें कई बाउंड्रीज भी टूटती हैं, कई चीजें भी टूटती हैं, शायद जो नियम है कानून है वो भी टूटते हैं, तो इसलिए वो जहाँ है वहीं रहे ज्यादा बेहतर।
0: कभी कभी ऐसा कुछ लिखा और बाद में खुद की पीठ थपथपाई जाती है, अरे क्या लिख दिया
1: मैंने, एक शेयर लिखा था और शायद उर्दू में है, लोगों को पता नहीं कैसे लगे, मगर मैं पढ़ दूंगा। आपको मालूम है वो वाला शेर मैंने आपको सुनाया था,
0: इरशाद।
1: कई चराग है रोशन, कई चराग है
0: रोशन,
1: बस उनकी जस्तजू से है इसरार, तेरी ही जात थी अब तक जो दरख्शां।
0: वाह वाह वाह,
1: तेरी ही जात थी अब तक। मैं इसका थोड़ा सा ट्रांसलेशन बता दूं लोगों को, ताकि कई चराग है रोशन तेरी जस्तजू से, मतलब ये है कि उनकी प्रेजेंस से कई लोग मुनव्वर हो गए, कई लोग उनकी प्रेजेंस से एकदम नहा लिए इश्क से, हर चीज से, बहुत खुशी से, हर चीज से। मगर असरार, मेरा पेन नेम है असरार, तेरे में ही वो कमी थी जो तू कुछ नहीं फायदा उठा पाए उनकी उनकी प्रेजेंस से, उनके इश्क से, तो वो उतना लबरेज, उतना मतलब डूब नहीं पाया उस चीज में जितना तुझे डूबना चाहिए था। तो मैं ये कहना चाह रहा था कि बहुत लोग सिर्फ उनकी परछाई से, हाँ,
0: यही मैं आपकी बातों से ये समझ रहा हूँ कि समझो एक नदी बह रही है, बहुत, लेकिन सब हाथ दूर है, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं वो बस ऐसे बैठ के ना नदी को देखते हैं।
1: मैं नदी की धारा देख रहा हूँ,
0: बस मैं देख रहा हूँ, लेकिन देखते देखते में भी कुछ लोग वो पा लेते हैं जो शायद नदी का पानी पी के ना पाए।
1: बिल्कुल, ऑब्जर्वेशन बहुत बड़ी चीज है।
0: हाँ, तो मैं, आप जब ये शेर कह रहे थे और जब आप इसका प्रीफेस बता रहे थे, चीजें बता रहे थे, तो मैंने ये महसूस किया कि अगर मैं यहाँ बैठा हूँ, एक नदी बह रही है और पूरा गांव उमड़ा है उसका पानी पीने के लिए, लेकिन मैं हूँ, मैं बैठा हूँ, मैं देख रहा हूँ,
1: कोई तो है कि नदी सोचती है कि कोई
0: मतलब क्या पानी पानी ऐसा बह रहा है, लोग पानी पी रहे हैं, अगर पीने से इन लोग इतने खुश है, तो मैं इस चीज को देख रहा हूँ, तो मुझे अंदर क्या खुशी महसूस हो रही है।
1: और सबसे बड़ी बात तो ये कि जैसे सब लोग ने समझ लिए, सब लोग ने इश्क बटाया आपके महबूब ने, आपके महबूब ने सबको इश्क बांटा, उसके पास तो इतना इश्क है कि उसने सबको बांटा, फिर भी कम नहीं पड़ा, मगर आप सोचते थे कि मैं जाकर डिस्टर्ब तो नहीं कर
0: रहा।
1: ये एक अलग लेवल की खुशी होती है, कभी कभी गम भी होता है कि नहीं मुझे डिस्टर्ब करना चाहिए, फिर आप सोचते हैं कि नहीं नहीं उस वक्त जो मैं सोच रहा था वो बहुत ही प्योर था, अब शायद थोड़ा मटेरियलिस्टिक बात है कि नहीं मुझे डिस्टर्ब, मुझे बात करनी चाहिए थी, मुझे जाना चाहिए था, मगर अब
0: लेकिन यही तो प्रेम है कि एक एक आशिक जो है, एक आशिक जो परेशान कि यार मैं क्या करूं,
1: आंख से आंख मिल गई उनको,
0: बस बस एक बार वो देख ले उसमें ही खुश है, बस उसमें ही खुश है।
1: जैसे मैंने इस पे भी एक शेर लिखा था, निगाह यार का हाल कोई तुझसे पूछे असरार, निगाह यार का हाल कोई तुझसे पूछे असरार, जब से देखी हमने होश में,
0: हां हां वाह वाह वाह,
1: जब से देखा हमने होश में आया है।
0: मैंने भी एक शेर लिखा था, मैं ऐसा बैठा हुआ था तो मुझे मेरे गुरुजी ने देखा, उस टाइम पे देखे और मुस्कुराया, तो मैंने देखा और देख के बोला कि ये तुम्हारा देखना मेरी तरफ, ये तुम्हारा देखना मेरी तरफ है, खुदा का देखना मेरी तरफ। तो बस मुझे ऐसा लगा कि जैसे मेरे गुरुजी मुझे देखने लगे, मुझे ऐसा लगा कि यार मेरा रब मुझे देख रहा है।
1: इश्क तो प्योरेस्ट फॉर्म में,
0: हाँ तो ऐसे उतर गया मेरे अंदर, मैं बोला हाँ, वो मोमेंट था मेरे लिए कि आहा हा, क्या क्या हो गया। मतलब इंसान इसी कोशिश में लगा रहता है ना कि एक बार ऊपर वाला देख ले उसे, है ना, है ना। तो वही तो आगे बढ़ते हैं, कुछ ऐसी चीजें कि आपने लिखा रात में, उसको बहुत मतलब पढ़ा पढ़ा पढ़ा पढ़ा पढ़ा और सुबह उठ के वो पेज को फाड़ के फेंक दिया,
1: खराब लग सकता है।
0: तो वो जर्नी जो है फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, मतलब रात में बहुत ज्यादा पसंद आ रहा है, मतलब अरे यार क्या लिख दिया मैं, और मन ही मन सोच रहे कि सुबह इसको सुनाना है लोगों को, और मतलब शायद सिर्फ तारीफें लूटनी है, और सुबह हुई तो वो पन्ने को फाड़ के फेंक दिया।
1: ऐसा होता है जरूर,
0: हाँ,
1: और इसलिए भी होता है क्योंकि मैं मेरे गुरु जी बताया करते थे कि इश्क में इंसान इवॉल्व करता है, पर सेकंड उसकी जो वेवलेंथ है, फ्रीक्वेंसी है, जो उसके जो इमिट हो रही है उसकी बॉडी से, उसके फीलिंग से, उसके इमोशन से, वो चेंज होते हैं। अगर आशिक का मिजाज चेंज ना हो तो वो आशिक नहीं।
0: वाह वाह वाह वाह वाह,
1: क्योंकि इश्क जो है हमें लगता है कि इश्क कंट्रोल देता है, नहीं, इश्क फ्रीडम देता है। इश्क अब वो इश्क है ही नहीं जो एक दूसरे को ग्रो ना करवा पाए, वो इश्क नहीं कि जो एक दूसरे को कब्जा रखे, एक दूसरे को टोके, एक दूसरे को ये करे, नहीं, इश्क जिस चीज में आप बेटर हैं आप ग्रो करें, जिस चीज में मैं बेटर हूँ मैं ग्रो करूँ, ये प्रॉपर मेरे हिसाब से इश्क की डेफिनेशन ही है। तो हम जो लिखते हैं वो उस स्टेज पे लिखते हैं, रात भर में या दो दिन बाद या तीन दिन बाद हम उस चीज से निकल कर दूसरी स्टेज में दाखिल होते हैं, तो हमें लगता है कि ये पुराना हो गया, नहीं, वो पुराना नहीं, वो किसी बंदे की लिए बहुत ही प्यारा है आज भी, जो तुम्हारी स्टेज पे जो तुम कल
0: हाँ, है ना, करेक्ट करेक्ट,
1: वहाँ पे कोई और इंसान रह के जब वो पढ़ेगा तो उसको बहुत मजा आएगा,
0: हाँ, क्योंकि जिस फेज से तुम गुजरे हो उस फेज पे बाकी के लोगों को आना है।
1: मैंने बोला ना कि रास्ता दरवाजा वही है, इश्क का दरवाजा एक ही, उसको सब वहाँ से सबको गुजरना है। तो जहाँ जैसे आप फलाने पिलर पे थे, आप दो किलोमीटर पहले आपने वो शेयर लिखा निर्वाणा से पहले, फिर एक किलोमीटर बचा वहाँ पे आपने कुछ शेयर लिखा, फिर आपने दरवाजे पे जाकर कुछ शेयर लिखा, तो इसका मतलब ये नहीं कि 5 किलोमीटर जो शेयर आपने लिखा था पहले वो खराब
0: है, नहीं, करेक्ट,
1: वो जो लोग 5 किलोमीटर पहले से जो आ रहे होंगे उनको शेयर पढ़ेंगे तो अच्छा लगेगा। तो सबकी एक रेंज होती है, आप दरवाजे के उस पार जब निकल जाएंगे इश्क के पार तब आप कुछ लिखेंगे तो और मजा आएगा लोगों को।
0: यही दुनिया को यही तो टटोलना कि दीवार के उस पार क्या है,
1: वो दरवाजे पार हो जाए, इश्क का दरवाजा पार हो जाए।
0: तो यही इश्क और शेरो शायरी और नज्मों से याद आया बुल्ले शाह साहब। बुल्ले शाह साहब

0: पहला बन गया था, उसके बाद से याद रखा है। तो बुल्ले शाह की के मतलब जबान से बात निकल गई कि अरे उन्होंने अपने घर से थोड़ी कुछ दिया है, सब अपना ही तो है। तो उनका ये कहना था कि उनकी सारी जो इश्क था, जो उनका सेक्रीफाइस था, जो भी था उनका, जो सरेंडर की जो होने की जो एबिलिटी थी, सब जो उनका रिवॉर्ड था सारा खत्म हो गया। अब वो परेशान हो गए, तो इतना परेशान हो गए कि वो निकलते थे अपने गुरुजी की गलियों से, निकलते थे, सब चीज करते थे। यहाँ तक कि एक कोठा था उस रास्ते में जहां से उनके गुरुजी कभी कदार निकलते थे, तो वहां पे कोठे पे चले गए वो। तो वहां पे जो तवायफ थी तो उनसे उन्होंने कहा कि आज मैं नाचूंगा। तो बोले पागल पागल कैसे सब आप नाचेंगे, आप मतलब इतने बड़े मौलवी, आप आलिम में मौलाना है, आप नाचेंगे? बोले नहीं, आज मेरा महबूब यहाँ से निकलेगा तो मैं नाचूंगा। पूरा दिन वो नाचे जब तक निकल नहीं गए, और इत्तेफाक से वो निकले भी नहीं। इतना इश्क में वो कि जहाँ पे नहाते थे, जो गुस्लखाना होता है, जो वॉशरूम होता है आज, आज, आज जो जहाँ पे आदमी
1: नहाता
0: है, तो जहाँ से पानी पहले इतना सिस्टम नहीं था ना, पाइप वाइप का, तो जहाँ पे नहा रहे थे उनके गुरुजी, वो जहाँ वो नहाने का पानी निकल रहा था वहां पे जाके बुल्ले शाह अपना सर लगा दिया, तो पानी वॉशरूम में भरने लगा। तो उनके गुरुजी बांस लिए, बांबू, और बांबू से पाइप को साफ करने लगे, तो इतना सर पे घाव हो गया कि खून आने लगा वापस से, पूरा सर फट गया उनका। जब देखे खून आने लगा तो गुरुजी, और ये इम्तिहान लेने वाला मालिक थे, तो तब वो गए और दोबारा देखते है कि अरे बुल्ला ये तो तू है। तब उन्होंने उनको गले, ऐसे बहुत सारे वाक्य थे जब उतना वो कुछ वक्फा, कुछ साल वो परेशान थे, बहुत ज्यादा परेशान थे मनाने के लिए। मैंने आपको मतलब मुख्तसर दो दो, दो वाक्य।
1: हाँ, वो तो उनकी गुरुजी के चौखट पर सर फोड़ दिए खुद का, क्या क्या नहीं किया।
0: आप सोचिए जब उनके हाथ से ही उनका खून निकला कि हाँ बांबू लेके पूरा फोड़ डाले उनका, तब उन्होंने मतलब एक्सेप्ट किया कि हाँ अब मेरी जो है प्राशिक, अब प्राशिक मेरा पूरा हुआ। वो तो चाहते थे कि मैं मतलब किसी बहाने मर जाऊं, बुल्ले शाह भी चाहते थे मैं किसी बहाने मर जाऊं इसी रास्ते में।
1: क्या इस तरह की क्या समर्पण होगा, मतलब ऐसे ऐसे मतलब शिष्य और गुरु की कहानी जैसे एकलव्य की कहानी है, उनसे बड़ा धनुष अच्छे से कोई चला नहीं सकता था, धनुर्धर कोई नहीं था, लेकिन अपने गुरु के प्यार में अपना दे दिया अंगूठा भाई।
0: आमिर खुसरो निजामुद्दीन की मोहब्बत में,
1: हाँ,
0: राधा कृष्ण, मीरा कृष्ण, सब कितने सारे लोग हैं। लक्ष्मण का राम के प्रति
1: प्रेम, समर्पण था, जो प्रेम था,
0: बहुत सारे ऐसे बहुत सारे बॉन्ड है जिसके बारे में बात कर सकते हैं। कुछ कुछ किस लेवल पे है, कुछ किसी लेवल पे है, कुछ किसी लेवल पे है।
1: हाँ, मतलब चीजें इतनी सारी है, लेकिन मेन मसला, मेन जो मामला जहाँ बिगड़ता है कि आजकल के यूथ को ये चीजें, इन चीजों का अभाव हो गया, ये चीजें मिल नहीं रही है। ये चीजें बहुत इजीली एक्सेसिबल, जैसे आप चले गए, आपने पढ़ लिया, आपको समझ में आ गया, लेकिन आजकल की जो यूथ है वो किसी और चीज से इंस्पायर है, जिन चीजों को शायद वो इंस्पायर होने जाते हैं और गलत रास्ते पे चले जाते। आज भी अगर वो अपने रूट्स को सुने, अपने रूट्स को पढ़े, अपने रूट्स को जाने, तो मुझे यकीन है कि चीजें फिर वो पुरानी युग में ले जाएंगी। तो मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ अब कि जैसे प्यार मोहब्बत की बात हो गई, हमने जाना मीरा का समर्पण, बुल्ले शाह साहब का समर्पण, सबका समर्पण, आपको कभी किसी ने अपने प्रेम का इजहार किया और आपने उसको मना किया, उस वक्त दिल में जो एक टीस पैदा होती है, जैसे हमको पता है कि ये शख्स हमको आके पूछेगा और हम उसको मना करेंगे, लेकिन वो मना करने में भी ऐसा दिल दुखता है, जो जो पीड़ा उठती है दिल के अंदर, जो दर्द उठता है, उस वक्त कुछ कभी लिखा है आपने कि आपने किसी को मना कर दिया? कि
0: मैंने लिखा नहीं, मैंने पैर छुए और ये इतनी बेहतरीन फीलिंग है कि इतने सारे लोग, अप्रोक्सीमेटली 8 बिलियन के अराउंड लोग हैं दुनिया में, और कोई एक इंसान, मर्द हो या औरत हो, कोई भी हो, एक इंसान आपको पसंद करता है दुनिया में, तो कितनी सौभाग्य की बात है कि इतना इतना प्रेम वो आप पे न्योछावर कर रही है, कर रहा है, या कर रहे जो भी है, ये कितनी बड़ी बात है। ये कितने आप कितने खुशकिस्मत हैं, कितने ही ज्यादा आपका सौभाग्य है कि आपको

0: एक इंसान जिसके पास पूरा ब्रह्मांड चक्कर लगाने के लिए हर चीज उसके पास है, कितना मटेरियलिस्टिक हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, मगर उसने आपको छुना। तो ये अगर मुझसे कोई पूछे तो ये पैर छूने के काम कि ए इंसान तूने मुझे प्यार किया, तूने मुझे पसंद किया, मगर मैं कहीं और,
1: मतलब
0: अपना मेरा ध्यान कहीं और। तो ये पैर छूने वाली बात है, मैंने कुछ लिखा नहीं, मैंने जो आपका सवाल था आपने कुछ लिखा।
1: अगर आप कुछ गा के इसको बयां कर सके तो कौन सा गाना आप गाएंगे इस चीज को बयां करने?
0: एक गाना समझ में आता है मुझे, वो आपकी नजरों में समझा।
1: हाँ तो थोड़ा गा के सुनाइए, क्योंकि मुझे पता है आप अच्छा गाते हो, तो आज आप मौजूद हो तो सब निकाला जाए थोड़ा थोड़ा करके।
0: इसका धुन कैसे गाने का मैं भूल गया।
1: आपकी नजरों ने समझा
0: प्यार के काबिल मुझे, दिल की धड़कन ठहर जा।

0: वाह वाह वाह वाह वाह वाह, क्या बात है क्या बात है। आप एक गाना गुनगुनाया करते थे, मैं अभी वो गाना भूल रहा हूँ, मेरे को याद नहीं आ रहा, लेकिन बहुत अच्छा लगता था वो। लेकिन अभी एक और गाना आप गुनगुनाते हैं, कलंक।
1: हाँ, बहुत
0: वो अगर आप सुना दे तो वो गाने की जो कशिश है, मतलब अगर आज के रेट में कोई सॉन्ग अगर कुछ डिफाइन कर सके तो मुझे लगता है इस गाने में जो कुछ लाइनें लिखी है, कुछ पंक्तियां लिखी है, कुछ चीजें लिखी है, अगर उसको इंसान सोच विचार कर तवज्जो दे थोड़ी उन चीजों पे, तो शायद उसके प्रेम को देखने के प्रेम को देखने का नजरिया बदल सकता है। तो अगर आप तो गुनगुना
1: बीच की है कुछ लाइनें, जैसे न जाने ये जमाना

0: क्या मतलब देखो ऊपर वाले की महिमा भी देखो, एक आदमी को हाइट दे दी, हाँ एक आदमी को चेहरा दे दिया, पर्सनालिटी दे दी, लिखना दे दिया, गाना दे दिया, और मतलब क्या अलग अलग महिमा है ऊपर वाले की। हाँ काश हमारा गला ऐसा होता, हम गले से ना पीना है। तो आगे बढ़ते हैं कि अब आते हैं मतलब शो के आखिरी पड़ाव पर हम पहुंच चुके हैं, तो कुछ एक दो सवाल और फिर इजाजत आपसे। तो अब ये जानेंगे हम कि बहुत कुछ लिखा, बहुत कुछ मिटाया, बहुत कुछ लिखकर अपने लिए रखा, कुछ शायद किसी को सुनाया, कोई इम्प्रेस भी हुआ होगा, लेकिन कभी एक ऐसा दौर आया जिंदगी में जब सोचा कि अब नहीं लिखना है, अब सब खत्म करना है, ये क्या कुछ नहीं।
1: मतलब ऐसा जो ब्लॉक आता है, ये
0: ब्लॉक नहीं,
1: उसके अलावा बात है। आप क्या कुछ नहीं, उसके अलावा की बात ही करनी। मैंने क्लैरिफिकेशन दिया कि ये ब्लॉक की बात नहीं कर रहे शब्द भाई, कि नहीं नहीं लिखने का मन नहीं कर रहा ये अलग बात है, नहीं लिखूंगा ये अलग बात है, या कुछ नहीं लिखना हो रहा है वो अलग बात है। मतलब कई कई सारी चीजें, नहीं लिखने का मन तभी करता है इंसान का, जैसे मैंने बताया कि शिकायतें ज्यादा हो जाती है, महबूब से शिकायतें ज्यादा हो जाती हैं, और कुछ मन नहीं करता कि हटाओ। तो ये ज्यादा दिन नहीं चलता, ये भी ज्यादा दिन नहीं चलता, ये इत्तेफाक ये है कि ये भी ज्यादा दिन नहीं चलता। ये होता नहीं कि महबूब की आप बुराई नहीं कर सकते, आप या तो इश्क करें या तो फिर बुराई कर लें,
0: दोनों नहीं कर सकते।
1: अरे तो एक जगह पे दो चीज रहेगी तो कॉन्फ्लिक्ट है ना,
0: एक मैदान में दो तलवार नहीं हो सकती। सही बात,
1: कॉन्फ्लिक्ट नहीं, इश्क है तो इश्क है, नफरत है तो नफरत है, एक एक दिल में दो चीज कैसे रहेंगी शब्द भाई।
0: नहीं लेकिन एक मोड आता है ऐसा कि मतलब जब नफरत है और वो ऑटोमेटिकली टर्न हो जाती है प्यार में,
1: बिल्कुल।
0: तो वो क्या मतलब मामला होता है कि मतलब एक आप चल रहे एक अलग डायमेंशन पे चल रहे हैं, है ना, मतलब नफरत यानी आदमी मरा हुआ पड़ा है,
1: सही।
0: फिर उससे प्यार हो गया, नहीं वो जिंदा हो गया, मतलब एक मुरझाए हुए फूल को फिर से उसकी खूबसूरती में लाना, तो ये प्रोसेस कैसे होता होगा प्यार में एक शायर के नजरिए से।
1: एक शायर की नजर जैसे मैंने एक बहुत ही अच्छा शेर तो नहीं है, मुझे उतना नहीं अच्छा, मगर मेरे सब बच्चे हैं, मैंने लिखा तेरे दिल की दीवारों का भी भला हो असरार, तेरे दिल की दीवारों
0: का भी भला हो असरार,
1: ये बड़ी बात है जो उनको संभाले रखा है।
0: वाह वाह,
1: कि मैंने इतनी ऊंची ऊंची दीवारें इश्क में खड़ी कर दी कि आप इससे बाहर नहीं निकल सकते इस मिजाज में। बाकी फ्रीडम की बात तो अलग है, मगर ये भी होता है कि भाई कितनी भी नफरत कर ले मगर हम जाके लड़ेंगे उसी दीवार से, इधर उधर वो एक एक एक एक मंजिला घर है इश्क, हमें रहना उसी में।
0: चार दीवारें एक छत है लेकिन उसमें सर इधर जा रहे तो इधर लगेगा, इधर
1: कभी गुस्सा
0: तो वही मतलब चार दीवारें बना रही है, गुस्सा है तो सर फोड़ रहे और प्यार है तो उसको ही चूम रहे
1: हैं, बहुत बहुत अच्छी तरीके से।
0: वाह वाह
1: वाह,
0: क्या एक राइटर मतलब राइटर्स को ऐसे देखा गया अक्सर कि इनकी मोहब्बत अधूरी रह जाती है, जैसे एक शायर थे मजाज साहब की जब मैंने कहानी सुनी कि बहुत बड़े एक यूनिवर्सिटी है नॉर्थ साइड में, नाम नहीं लूंगा मैं उस यूनिवर्सिटी का, उसमें वो प्रोफेसर थे, बहुत बड़े प्रोफेसर, उर्दू के प्रोफेसर, उनको उसी कॉलेज में किसी प्रोफेसर से प्यार हो गया और अब वो प्रोफेसर माने नहीं, तो मजाज साहब नौकरी छोड़ के शायरी करने लगे, लेकिन कैसी शायरी, ऐसी शायरी नहीं कि चलो जाके मुशायरा पढ़ते लोगों से पैसा, वो इतने टूट गए प्रेम में, इतने पागल हो गए कि बस कोई थोड़ी शराब पिला दे तो उसको पूरी रात बैठ के शायरी सुनाए। तो उनका हाल ऐसा हो गया कि ऐसा करते रहे मुशायरे गए नहीं, पैसे खत्म हो गए, पैसे ही नहीं। अब कोई आदमी क्या कर रहा है कि चलो लाइफ में एंटरटेनमेंट नहीं है, मजाज मिल गया, मजाज को बुला लिया, बिठा दिया, थोड़ी चाय पिला दी, चलो सुनाओ, अब उनको एक एक दो घंटा सुना रहे। एक दिन ऐसा आया कि लोगों ने पकड़ा उनको दिल्ली में, एकदम कड़ाके की सर्दी, एकदम खतरनाक ठंड, जहाँ पे मतलब बिना शॉल विल के आप निकलो तो कप आ जाओ, एकदम ऐसे कड़क हो जाओ। पूरी रात लोगों ने उनको शराब पिलाई, शायरी सुनी और रात के लगभग 2-2:30 बजे उनको छोड़ के रस्ते पे चले गए। वो शराब के नशे में इतनी धुत हो गई कि सुबह पता चला कि मजाज नहीं रहे दुनिया में। ऐसा वक्त आया। तो क्या शायर किसी से प्यार करते करते मर जाता है। हाँ, ये शायद हमारे मतलब आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट हो, लेकिन मैं जानना चाहता हूँ, क्या मरने के बाद भी शायद उसी शख्स को दूसरी दुनिया से भी चाहता होगा?
1: जो मतलब जो इस दुनिया में किसी को नहीं पा सकता वो वहां पर नहीं पा सकता। और पाने की जो बात है ये बहुत ही, मैंने आपको बताया ना कि यूनियन यही होना है इस, हमें मतलब अगर ये जरूरी ना होता, ये फेज जरूरी ना होता तो हमें पैदा नहीं किया जाता।
0: ओके,
1: वही हमको मिला दिया था ना जब वहां पे दो आत्माएं थी वही मिल लेते, क्या दिक्कत थी। मगर यहाँ यहाँ करके मिलने में और यहाँ मेहनत करके मिलने में और वहाँ मिलने में फर्क है। तो इश्क पहली बात तो अधूरा नहीं है, अगर आप इश्क कह देते हैं तो वो अधूरा बचाइए। मैं एक तरफा इश्क को अधूरा नहीं मानता, ये तो आदमी पूरा टूट गया, बर्बाद हो गया, मर गया। तो इश्क वो ऊपर वाला उनको नवाज देता है, यहीं पे वो इतना दे देता है। इश्क जैसे इश्क भी कई कैटेगरीज हैं, जैसे आदमी करते करते करते करते करते करते फिर इंसान को, मैंने बोला ना इंसान को इंसान की जरूरत रह नहीं जाती। मीरा को कृष्ण के बिना जिस्म से मोहब्बत इसीलिए हो पाई क्योंकि उनको इश्क के माने बहुत कायदे से पता थे कि मुझे जिस्म नहीं चाहिए। तो इसमें मतलब जिस्म की जरूरत नहीं है। और इसी दुनिया में आदमी पा लिए, मीरा ने इस दुनिया में कृष्ण को पाया और इस तरह से पाया कि वो मतलब ईश्वर के रूप में उनको मिले। ऐसा नहीं मिला कि कोई उनको कोई बॉयफ्रेंड है कैसे क्या।
0: हाँ, उनका मतलब प्रेम के प्रति निराकार वाली भावना थी, कोई आकार में नहीं।
1: अल्टीमेट गोल जो है वो मैं मतलब एट द एंड ऑफ द टाइम यही है कि भाई आपको सुकून कहाँ मिलता है, सबसे ज्यादा सुकून ईश्वर की बाहों में, मतलब हमारे मालिक की बाहों में। अगर मैं मतलब एकदम एंड रिजल्ट बता दूं इश्क का, अगर मेरे से कोई पूछे कि इश्क का एंड रिजल्ट क्या है, तो मैं ये बोलूंगा कि भाई दुनिया बनी है शब्बीर भाई मोहब्बत से, दुनिया बनी ही मोहब्बत के लिए है, मोहब्बत करने के लिए बनी है। जितना हो सके लोगों से मैं कहता हूँ प्यार करिए, आप लोगों से अपने पेड़ पौधों को प्यार करिए, अपने छत को प्यार करिए, अपने एसी को प्यार करिए, अपने बॉस को प्यार कीजिए, सबको प्यार करें। इस इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट होता है भाई, तब एटम बना है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन सब अट्रैक्ट हुए आके, सब अलग अलग। जब दुनिया बनी बिग बैंग हुआ तो सारी चीजें अलग थी, सब इधर उधर घूम रहे थे, फिर इन लोगों ने सोचा कि अट्रैक्ट होते हैं, अट्रैक्ट हुए तो एटम बने, फिर कई सारे एटम मिले तो मॉलिक्यूल बना, कुछ मॉलिक्यूल मिले तो कंपाउंड बना, बनते बनते हम बन गए,
0: हम बन गए। करेक्ट करेक्ट करेक्ट करेक्ट।
1: तो ये यूनियन का ही जो दुनिया है वो यूनियन का ही एक समझिए स्वरूप है। अगर हम आज दो मैग्नेट रखते हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि दो मैग्नेट, पूरी दुनिया ही ऐसे काम करती है, हमें मिलना ही है, हमें यूनियन ही है। तो जो मरने के बाद जो अपनी करीब वो यही मिल जाते हैं, चाहे आखिरी सांस में मिलाए मालिक। मगर आदमी जिससे बहुत ज्यादा प्यार करता है, शिक्षा मेरा ऐसा मानना है कि जिससे बहुत ज्यादा प्यार करता है उससे एक ना एक बार चाहे आखिरी सांस में मिले, मिलता ही जरूर, वो मालिक बहुत ही बहुत रहम वाला है, वो मिला देता है। तुम जिससे मोहब्बत करोगे, तुम एक, अगर मुझे लगता है एक लाइट से अगर तुम उस लेवल की मोहब्बत कर दोगे तो जब तुम्हारी आखिरी सांस होगी तो लाइट तुम्हारे सामने खड़ी होगी।
0: हाँ, वो तो सही बात है, वो तो सही बात है।
1: तो यही जवाब है मेरा, और
0: वही मुझे भी यही लगता है कि प्रेम का कोई आकार नहीं होता, वो निराकार होता है, उसको किसी भी फॉर्म, आप प्रेम को किसी भी फॉर्म में पा सकते हैं। एक इंसान अपने पेट से प्यार कर सकता है, कोई अपने घर से बहुत ज्यादा प्यार करता है तो वो उसको इतना क्लीन रखेगा घर को कि यार इतना भी कचरा नहीं दिखना चाहिए, है ना। तो ये उसका प्यार ही तो है उसके घर के प्रति। तो अभी जाते जाते एक आखिरी सवाल, अगर जिंदगी में आप राइटर नहीं बनते, कुछ लिखते नहीं, तो क्या करते
1: यार? लिखते नहीं तो मतलब बहुत कुछ कर सकते थे, कहीं मजदूरी कर लेते। मगर ये कुछ चीजें, जैसे मैं गाता भी अच्छा हूँ, मतलब ऑनेस्टी अगर दिखाऊं मैं इस जवाब को देने के प्रति, तो मैं बहुत कुछ कर सकता था, मगर नहीं, मैं खुश हूँ कि मैं लिखता हूँ, मैं बहुत खुश हूँ कि मैं गा लेता हूँ। तो मेरे सारे सारे काम मेरे इश्क से ही रिलेटेड है। मैं कुछ ना करता तो इश्क, वो एक
0: कुछ नहीं करता तो इश्क करता है,
1: इश्क करता तो कुछ नहीं करता तो शायद फिर इश्क करता, और कुछ नहीं करता, मुझे इश्क ही सूट करता है, मैं वही करता, मैं उसमें ज्यादा माहिर हूँ।
0: अच्छा,
1: और सबको मतलब सबको, सबसे मेरी रिक्वेस्ट है कि आप लोग भी इश्क करें, लोगों से मोहब्बत करें, अपने चारों तरफ अपने सराउंडिंग से मोहब्बत करें, अपने इन्वायरमेंट से मोहब्बत करें, अपने इकोसिस्टम से मोहब्बत करें, अपने बिल्डिंग वाले से मोहब्बत करें, अपने वॉचमैन से मोहब्बत करें, अपने गार्ड से मोहब्बत करें, सबसे मोहब्बत करें, प्यार बांटो यार,
0: इश्क करें, प्यार करें। इसका मतलब यह नहीं जाके इट जस्ट दैट यू नीड टू बी मोर ह्यूमन more gets bent towards the humanity
1: than anything
0: gets bent towards humanity, just get closer to just be the pure soul who can help, be kind, be positive, आपका पॉजिटिव होना भी शायद किसी को एक ऐसे नेगेटिव जोन से बाहर निकाले जिससे वो सालों से जूझ रहा हो, मतलब बहुत ज्यादा नेगेटिव।
1: मैं ये बताता हूँ कि जब जो हम जो वी हैव बीन क्रिएटेड फॉर लव, हमें मतलब ये बनाया ही इसीलिए गया कि आप प्यार करें, हमें प्यार से बनाया गया शब्बीर भाई। आप एक जब एक बच्चा माँ के पेट में रहता है आप उसको देखिए प्लासेंटा से क्या क्या आता है, कितना न्यूट्रिशन आता है, प्यार नहीं तो क्या है। मैं तो हर चीज को इश्क से देखता हूँ यार, इश्क ही मेरा चश्मा है, मैंने बताया पहले आपको, मैं उसी नजर से देखता हूँ चीजों को। मुझे बड़ी खूबसूरत लगती है, मुझे अंधा आदमी भी खूबसूरत लगता है, मुझे किसी के हाथ पैर ना हो फिर भी खूबसूरत लगता है, मुझे बहुत खूबसूरती है इस दुनिया, ये दुनिया में खूबसूरती के अलावा कुछ है ही नहीं।
0: वाह, इससे अच्छी क्या ही एंड हो सकता था हमारे पॉडकास्ट का कि हम आए इश्क पे, हमने दुनिया को खूबसूरत कहा और न जाने कितने अलग अलग इश्क के पहलू बताए, कितने अलग अलग उसके स्टेजेस बताए, उसकी कैटेगरीज बताई, कैसे हमने अलग अलग एग्जांपल बताए कि किस तरीके से मीरा का डिवोशन, बुल्ले शाह साहब का डिवोशन और अलग अलग डिवोशन, इन सारे डिवोशंस ने मिलकर एक ही सीख दी है लोगों को कि यू शुड बी वेरी काइंडफुल एंड वेरी मच लवेबल, दैट योर लव शुड गेट स्प्रेड इन एंटायर वर्ल्ड, इट शुड नॉट गेट बाउंडेड, ये बाउंड नहीं रहना चाहिए या आप इसको क्लोज फॉर्म में ना रखें। इफ यू हैव समथिंग टू गिव प्लीज गिव इट बैक, आप दो, क्योंकि आपने थोड़ा दिया तो वो बहुत ज्यादा फॉर्म में बनके आपके पास ही लौटेगा। लेकिन जब आप एक इंसान तभी अपने जिंदगी में आगे बढ़ता है जब वो अपने अंदर की चीजों को खाली करता है, जब तक आप अपने आप को खाली नहीं करोगे तब तक आपके अंदर फिर से आप कुछ भर नहीं सकते।
1: बर्तन उतना ही बड़ा है, उसको खाली करते रहिए, नई चीजें एब्जॉर्ब करिए, नई चीजें प्यार ऐसी चीज है कि आपको नए नए एक्सपीरियंस होते रहेंगे। ठहरा हुआ पानी सड़ जाता है,
0: ठहरे हुए पानी में कीड़े मकोड़े सब आने लगते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, कल या फिर या परसों या जब कभी समय मिले हम फिर आएंगे एक नए कवि को लेकर, एक नई प्रतिभा को लेकर, एक नए कॉन्फिडेंस को लेकर आपके समक्ष। तब तक के लिए आपसे विदा लेते हैं, मैं आपका होस्ट एंड दोस्त आरजे एंड करता हूँ इस शो को। मुझे उम्मीद है कि आपको ये शो पसंद आया होगा। टाटा बाय बाय,
1: थैंक यू।

0: बहुत सुंदर, बहुत प्रभावशाली। एक संगीत के जादू तो हम जानते ही हैं, संगीत का गरिमा क्या होता है इसके बारे हम सब जानते हैं। संगीत से सुबह होती है, संगीत से शाम होती है, संगीत से हमारा जीवन एक परिपूर्ण होता है। तो फ्रेंड्स, टुडे इन आचार्य कॉलेज वी हैव दिस इज सुनीता गंगरडे मैम। मैम, वेलकम टू आचार्य 90 FM ओन रेडियो एंड वी आर ब्लेस्ड टू हैव यू हियर। Ma'am has done her faculty at, she is in faculty of Maya Somaiya School of Music and Performing Arts, Somaiya Vidyavihar University. She is an eminent classical and semi-classical vocalist. She has done, she has achieved gold medal in MA in vocal Indian classical music, and she is disciple of Vidushi Apurva Gokhaleji and Pandit Kiran Phatak and Vidushi Dhanashri Pandit Rai. She is a recipient of former President Dr. Shankar Dayal Sharma Award, Lata Mangeshkar Alankaran Award winner, and awarded a gold medal in memory of Sri R.C. Jal. Performed in International Storytelling Program Gatha in 2023, performed in Indo-Hungarian Program in 2024, and performed in Sri Lankan Program in 2025. She has published 2 papers in international peer-reviewed journals in 2023 and 24. She has been the judge at ZTV Little Champs and awarded a gold medal by Devi Ahila University in memory of Sri Rabindranath Tagore Janma Shatabdi Mahotsav. She is an active classical music-based YouTuber with 100+ videos and 4,000 subscribers. Awarded Guru Gaurav Puraskar by Art and Bits Foundation Pune in 2024 and awarded by Sangeet Kala Samman by Akhil Bhatiya Shri Gangade Samaj Mahila Mandal Khandwa at 9th March 2025. So she was invited to our Acharya Marathi College for end of musical therapy. She has beautifully hosted the program and all were obliged by that. So today we have as a guest speaker over here. So ma'am, थोड़ा पहले के थोड़ा पीछे जाते हैं और जानते हैं आपका, आप खांडवा से है, मध्य प्रदेश से है, मध्य प्रदेश से तो मिठाई बहुत पसंद है हमें, और दूसरी चीज है मध्य प्रदेश की साड़ी। एक मध्य प्रदेश का अपने एक अलग सा कल्चर है जहाँ पे आप फुली फली बड़ी हो गई, तो थोड़े उसके बारे में, आपका घर कैसा था, आपके माता पिता के बारे में थोड़ा सा हमें बताइए।
1: जरूर जरूर तेजस्विनी जी, सबसे पहले तो आपने मुझे इन्वाइट किया, बहुत बहुत धन्यवाद। तो मैं, मुझे गर्व होता है कि मैं खंडवा, मेरी भूमि खंडवा है, जहाँ के किशोर कुमार जी हैं, जगत विख्यात जिनका नाम है। तो मुझे अच्छा लगता है कि मैं ऐसी नगरी से हूँ जहाँ से इतने बड़े बड़े आर्टिस्ट निकले हैं। सो मध्य प्रदेश जो है उसको तो भारत का हृदय कहा जाता है, और संगीत के लिए मुझे लगता है बहुत ही अच्छा स्कोप है वहाँ पर। पंडित कुमार गंधर्व जी मध्य प्रदेश से ही है, और खंडवा में और इंदौर में बहुत अच्छा एटमोसफियर है। मेरे माता पिता जो थे उनको बहुत संगीत का शौक था, और बचपन से ही उन्होंने संगीत की शिक्षा मुझे दिलाई। अच्छा। स्पेशली क्लासिकल म्यूजिक का बहुत शौक था मेरे पिताजी को, और ट्रांसफरेबल जॉब में थे, लेकिन जहाँ भी ट्रांसफर होके जाते थे सबसे पहली प्रायोरिटी उनकी होती थी कि संगीत गुरु कौन हुआ। सो कभी भी उनके ही प्रयासों की वजह से हम, पिताजी का ट्रांसफरेबल जॉब होने के बाद भी हम सीखते गए, और ये जो पैशन है ये धीरे धीरे, मैंने इसी में मेरा ग्रेजुएशन किया। एंड डेफिनेटली जब हम किसी चीज की साधना करते हैं तो वो कहीं ना कहीं हमें किसी अच्छे मुकाम पर ले आता है। तो आज जो कुछ भी हूँ वो पिताजी के प्रयासों की वजह से हूँ। और बहुत अच्छी बांसुरी वादक थे वो।
0: अच्छा।
1: तो रागदारी का कोई नॉलेज नहीं था, लेकिन अपने आप जब मैं गाती थी तो वो फ्लूट पर जुगलबंदी करते थे, और बिना कुछ बताए कि कौन सा राग है, क्या स्वर है, उनका इतना कमांड था। तो कहूंगी कि उनकी आत्मा में संगीत था। बहुत बहुत सुनने के शौकीन, रात रात भर प्रोग्राम सुनना, हम जो छोटे छोटे से थे हमें लेकर जाना, और उन्हीं के कारण ये धीरे धीरे हम सीखते गए। हाँ। और आज यहाँ आ गए।
0: कोई भी मतलब म्यूजिक हो, चाहे हमारी शिक्षा अध्ययन हो, गुरु का महत्व बहुत महत्वपूर्ण रहता है। तो गुरु कौन से थे आप?
1: बचपन में मैंने शिक्षा पाई श्री हरिश्चंद्र ठाकुर जी से, भोपाल में काफी सालों तक वो एमएलबी कॉलेज में एचओडी रहे, और उसके बाद जब मैं 1996 में शादी होकर मुंबई आ गई तो मैंने यहाँ पर सबसे पहले श्री किरण फाटक सर से संगीत सीखा। लगभग 15 साल तो मैंने उनसे फिजिकल बाद में मैं कहूंगी कि ये तो एक जीवन ही कम संगीत के लिए, आज भी सर के कांटेक्ट में हूँ और अध्ययन चालू है। उसके बाद 2017 में मैंने अपूर्वा गोखले जी के पास ग्वालियर घराने की गायकी लेना शुरू किया जो आज भी चालू है। और चूंकि मुझे सेमी क्लासिकल का बहुत शौक
0: है,
1: मेरे पिताजी मेरी आवाज सुनकर बचपन में ही कहा करते थे कि आपकी आवाज ठुमरी के लायक है। सो मुझे लगाव भी था बहुत। मुझे उस समय में कैसेट्स चलते थे, उन्होंने मुझे काफी सारे कैसेट्स लाकर दिए थे और सुनती रही मैं। सुन सुन के मुझे सेमी का बहुत शौक हो, क्योंकि उसमें जो भाव है वो मुझे बहुत अट्रैक्ट करता था। तो इस वजह से मैं धनश्री पंडित राय जो शोभा गोखले जी के डिसाइपल हैं उनके पास मैंने जाना शुरू किया। और कुछ थोड़ी बहुत भी जो मैं उनसे तालीम ले पाई हूँ सेमी की, वो धनश्री जी से ली है।
0: जी जी, और धनश्री जी से मेरी भी मुलाकात हुई थी, बिकॉज आई ऑल्सो हैव सम कनेक्ट्स विद इंडियन क्लासिकल म्यूजिक। तो बहुत बड़ी विदुषी है। सुनीता जी, अभी आपने ठुमरी का जिक्र किया है तो हमारे दर्शकों के लिए एक छोटी सी कुछ बंदिश आप ठुमरी की पेशकश करेंगे तो बहुत बढ़िया रहेगा।

0: सुनीता जी, जैसे हम आपने कहा आप कैसेट से बहुत सारे दिग्गजों को सुनती थी, तो आपके फेवरेट कौन है? मतलब इंडियन क्लासिकल म्यूजिक में, शास्त्रीय संगीत में और उपशास्त्रीय संगीत में। आपने जिक्र किया शोभा गुरु जी का, तो आपकी कौन से मतलब आप किनको ज़्यादा सुनती है, सुनना पसंद करती है और उनसे ज़्यादा सीखती?
1: क्लासिकल म्यूजिक में पंडित जसराज जी,
0: अच्छा
1: उनके डिसाइपल संजीव अभ्यंकर जी और अजय चक्रवर्ती जी को सुनना बहुत
0: ओके
1: पसंद है। ऐसे तो मैं नाम बताना बहुत मुश्किल
0: हाँ
1: होता है,
0: मुश्किल है।
1: क्योंकि कई बार कुछ राग हमें कुछ आर्टिस्ट के बहुत अच्छे लगते हैं, तो हम सुनते हैं उनको। और लाइट म्यूजिक में मुझे शोभा गुप्ता जी का शुरू से ही
0: पसंद
1: बहुत पसंद रहा, और इसी वजह से शायद कहीं ना कहीं धनश्री जी से मुलाकात होगी और उनको गुरु रूप में मैंने पाया। मुझे गुरुओं का बहुत, सभी गुरुओं का मेरे ऊपर बहुत आशीर्वाद है, इस बात के लिए मैं बहुत धन्य हूँ।
0: जी बिल्कुल। और हम ये मानते हैं कि गोइंग टू म्यूजिकल कॉन्सर्ट्स दैट गिव्स अ मेन इम्पैक्ट ऑन अस, मतलब हमारे अपब्रिंगिंग में जो म्यूजिकल कॉन्सर्ट है, जैसे कि आपने शोभा गुड्डू जी का जिक्र किया, मैंने उनको पहले सुना था जब मैं भी छोटी छोटी थी, तो मेरे मम्मी पापा गोवा में दीनानाथ मंगेशकर, मास्टर दीनानाथ मंगेशकर सम्मेलन स्मृति समारोह होता था, वहाँ पे उनको सुना था। तो आप ऐसे म्यूजिक कॉन्सर्ट में कहाँ कहाँ गए हैं?
1: ही मुझे शौक था म्यूजिक कॉन्सर्ट अटेंड करने का। खंडवा में जब जब भी, क्योंकि किशोर कुमार की नगरी है, तो वहाँ पर किशोर कुमार की स्मृति में बहुत सारे प्रोग्राम्स होते रहते थे। अब तो वहाँ उनकी स्मृति में गौरीकुंज नाम का एक बहुत बड़ा इंस्टीट्यूट बन गया है, म्यूजिक
0: अच्छा
1: कॉलेज ओपन हुआ है। तो जब जब भी जैसे मौका मिलता था, तानसेन समारोह में मैं गई हूँ, वहाँ सुनती थी। कालिदास समारोह में गई हूँ, वहाँ। फिर हमारे ओंकारेश्वर में नटराज उत्सव होता था, जहाँ पर कि बड़े बड़े कलाकारों का गायन होता। तो छोटी जगह से हूँ, खंडवा बहुत बड़ा नहीं है, लेकिन जब जब भी मौका मिलता था मैं ज़रूर कॉन्सर्ट्स अटेंड करती थी, क्योंकि लाइव म्यूजिक सुन के
0: हाँ
1: जो हमारे मन पे उसका प्रभाव होता है वो बहुत ही अलग होता है। इसीलिए शास्त्रीय संगीत में कहा है कि सुनना बहुत
0: सुनना
1: जरूरी
0: जरूरी, और वो गुरु शिष्य परंपरा भी उसको ज्यादा मायने रखती
1: जी।
0: है। खंडवा से कुमार गंधर्व जी भी वहाँ पे रहते थे
1: कुमार
0: ना?
1: गंधर्व जी देवास से।
0: देवास से। यहाँ पे एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं और
1: जरूर
0: आगे बढ़ते हैं। हम श्रोते आप सुनते रहिए आचार्य 90 FM ओल्ड रेडियो। टुडे वी आर हैविंग अ गेस्ट डॉक्टर सुनीता गंगरडे, हु इज डिसाइपल ऑफ अपूर्वा गोखले जी, एंड शी इज बीइंग अ परफॉर्मर एंड शी इज डिलीवरिंग हर लेक्चर्स ऑन म्यूजिक थेरेपी।

0: Welcome after the break. You're listening to Acharya 90FM, your own radio. And today in our guest interview, we have Dr. Sunita Gangareddy, ma'am. Ma'am, आपको ये पूछना है कि आपका अपना अपना रियाज होता होगा, मतलब आप बच्चों को कैसे सिखाते हैं वो तो अगला मेरा क्वेश्चन होगा, लेकिन आप अपना रियाज या अपना जो म्यूजिक ऐसा है कि हम सीखते रहते हैं, हर दिन सीखते हैं, नया नया सीखते रहते हैं, तो आपका रियाज आप कैसे करते हैं?
1: हर एक संगीत का जो प्रेमी होता है, स्पेशली शास्त्रीय संगीत, उसके लिए रियाज बहुत जरूरी है। तो हर दिन मेरी दिन की शुरुआत रियाज से ही होती है। फ्रेश होने के बाद मुझे अपने लिए चाहिए कम से कम हाफ एन आवर। तो एक बार जो एक राग हम शुरू कर देते हैं मॉर्निंग में, और रियाज कहते हैं कि सिर्फ अपने लिए होता है, तो मैं एकांत पसंद करती हूँ उस समय में, और जो रियाज में राग लेती हूँ वो दिन भर मेरे दिमाग में चलता रहता है। तो रियाज बहुत ज़रूरी है। कहते हैं कि एक दिन भी रियाज छोटा तो हम एक स्टेप पीछे आते हैं। तो जितना मुझे लगता है कि मेरे लिए खाना खाना ज़रूरी है, उतना मेरे लिए रियाज ज़रूरी है।
0: पहले कहा जाता था सुबह से शाम तक वो रियाज करते थे, और इसलिए वो तानसेन और ये इतने बड़े कलाकार हुए हैं। तो आप वो बिलीव करते हैं कि इतना इतने देर का, इतने घंटों का रियाज होना ज़रूरी है, या फिर आप दो चार घंटा आपका खुद का रियाज करें, या फिर आधा घंटा रियाज करें? क्योंकि आज हमें बहुत मतलब जॉब पे भी जाना है, बच्चों को भी पढ़ाना है, घर वालों को भी संभालना है, ये सारे रिस्पॉन्सिबिलिटीज रहती है। तो आप
1: एक्चुअली इसके लिए सही तालीम मिलना बहुत ज़रूरी है। संगीत ऐसा विषय है जिसमें गुरु के सामने बैठकर ही सीखा जाता है। आजकल लोग सोचते हैं हम यूट्यूब से सीख लेंगे और हम बड़े विद्वान बन जाएंगे, ऐसा नहीं है। आज के भी टाइम में सही गुरु का चुनाव करना और पूरी श्रद्धा और लगन के साथ गुरु के सामने बैठ कर रियाज करना और गुरु के कहे अनुसार, तो निश्चित है कि आपकी प्रोग्रेस होगी ही। ऐसा नहीं है कि बहुत घंटों करने के बाद ही कुछ मिलता है। सही डायरेक्शन में अगर हम जाएंगे, तो मैं तो सबको हमेशा सिखाते समय कहती हूँ कि जो भी करना है सब संभाल के करना है। एज ए लेडी हमें बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज रहती हैं, उसके बाद भी अगर हमें कला में कुछ करना है, कोई भी कला हो, तो हमें सब चीज़ें संभाल के करनी पड़ती है। पर बेशक बहुत साधना कहा गया है, तो हमें कई घंटों टाइम देना ही पड़ता है। रियाज जो है वो तीन तरीके से होता है ऐसा मैं मानती हूँ। फिजिकली बैठकर जितना हम कर सकते हैं, दूसरा सुनने से। अगर किसी दिन हमें नहीं टाइम मिल पा रहा है तो एटलीस्ट हम सुन लें, और तीसरा मनन चिंतन करने से। ये अगर कुछ भी चीज़ें हमारे दिमाग में कंटिन्यूसली चल रही है कि ये राग दे तो उसके बोल आप कैसे जाएंगे, कहानी कैसे जाएगी, सरगम कैसे जाएगी, तो वो मन में पूरे टाइम चलते रहना, वो भी रियाज है।
0: पढ़ते हैं आपके अध्यापन की ओर। आप सुमेया कॉलेज में बहुत सालों से है, बच्चों को पढ़ा रहे हैं, तो वो अनुभव कैसा रहा आपके जीवन में?
1: मैंने जो शास्त्रीय संगीत सीखा, सबसे पहले तो गुरु से तो सीखा ही, लेकिन मैंने स्कूल में भी एक एज ए वन सब्जेक्ट स्कूल में मेरा म्यूजिक था। बाद में मेरा इंटरेस्ट मुझे लगा कि इसमें ही है, मेरे फादर को भी लगा, तो मैंने म्यूजिक में ही एम ए किया। तो वहाँ से जो है मुझे एक दिशा मिल गई, सही दिशा। मुझे ऐसा लगा नहीं मुझे

0: ये हमने सोचा वही हमारी प्रोग्रेस रुकती है. सो जितना सीखेंगे, ये तो समंदर की तरह है कि जितना गोता लगाएंगे अंदर उतना आनंद बढ़ने वाला है. तो एक जन्म ही कम है, इसलिए संगीत तो चल रहा है. और माया सुमैया में आने का मेरा ऐसा रहा कि 2015 में मैं सुमैया स्कूल ऑफ म्यूजिक में अपॉइंटमेंट हुआ मेरा. और वहाँ पर ये सब आउटसाइडर भी अटेंड कर सकते थे, सुमैया के स्टूडेंट्स. ऐसा पार्ट टाइम था ये सुमैया स्कूल ऑफ म्यूजिक. तो 2015 से लेकर ये 6 ईयर्स चला और 75+ स्टूडेंट्स थे. बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स रहा. उसके बाद सुमैया जी जो हमारी ट्रस्टी हैं, उन्होंने ये डिसीजन लिया कि नहीं अभी इसको हम यूनिवर्सिटी में एज ए डिग्री कोर्स स्टार्ट करेंगे. तो 2021 से स्कूल ऑफ म्यूजिक एंड परफॉर्मिंग आर्ट्स में मैं फैकल्टी हूँ, जहाँ पर BPA, MPA, PhD सर्टिफिकेट कोर्सेज.
1: मैम, आजकल के बच्चे बहुत टेक्निकली, मतलब टेक्निक ज़्यादा यूज़ करते हैं, तो इनके प्रति जैसे हम देखते हैं पूना में है, कहीं कहीं बेंगलोर में है, जो संगीत आपने कहा मध्य प्रदेश में, वो म्यूजिक के प्रति ज़्यादा उनका लगाव रहता है. लेकिन बॉम्बे जैसे सिटी में आप बोल रहे हैं तो इतना अच्छा आप डिलीवरी दे रहे हैं उनको, 75 स्टूडेंट्स है, तो उनका मतलब शास्त्रीय संगीत के प्रति कैसा उनका लगाव है, उसके बारे में थोड़ा बताएं.
0: एक्चुअली आजकल के जो यंग बच्चे हैं वो शास्त्रीय संगीत के प्रति उनका रुझान कम है. लेकिन मेरी यही कोशिश रही कि मेरा सिखाने का जो तरीका था, जब मैंने यहाँ महसूस किया 2015 में आने के बाद, कितनी लॉकडाउन भरी लाइफ में कितने लोग शास्त्रीय संगीत सीखने आते हैं, तो जो जो भी स्टूडेंट्स आए इस वजह से बढ़ते गए क्योंकि उनको मेरा टीचिंग स्टाइल बहुत पसंद आया. बिकॉज थोड़ी सी मैं लाइट की बात करती थी, जैसे मैंने आज हमीर राग सिखाया है उनको और मैंने स्वर बता दिए हैं कि सा रे सा ग म ध नी ग सा. अभी उसके साथ अगर मैंने उनको रिलेट कर दिया कि मधुबन मेरा ठिकाना चल, ये जो हम लाइट की बात करते हैं उससे बच्चों को एक समझ में आता है कि अरे ये तो हमें बहुत अच्छे से पता है, लेकिन राग हमें आज पता चला कि दिस इज बेस्ड ऑन राग हमीर. तो उनका जो है इंटरेस्ट और बढ़ जाता है कि अरे वाह, जरूर हम सीखेंगे. और कुछ भी नहीं आने के बाद भी जब मैं कोई राग सिखाती थी ना, तो वो इमिजिएटली सॉन्ग्स बताते थे, मीन्स वो रिलेट कर पाते थे कि अरे मैम यमन राग आपने बताया तो ये सब गाने यमन के हैं, विदाउट एनी नॉलेज. तो ये बहुत अच्छा लगता था और इस वजह से बहुत सारे लोग सीखने आने लगे. तो मुझे लगता है आज के टाइम में हम सिर्फ क्लासिकल की बात करें उसके बजाय अगर हम थोड़ी सी उनको इंटरेस्टिंग तरीके से जानकारी देते हैं तो उनका इंटरेस्ट बढ़ता है.
1: अभी अब हम शास्त्रीय संगीत की बात कर रहे हैं तो आप बुक्स भी पढ़ते होंगे, क्योंकि बच्चों को ये भी जानना ज़रूरी है कि बुक्स को पढ़ना भी बहुत ज़रूरी है शास्त्रीय संगीत का अगर आप अध्ययन कर रहे हैं.
0: डेफिनेटली थ्योरी पढ़ना बहुत जरूरी है क्योंकि ये दो पक्ष हैं, एक शास्त्र पक्ष है और एक कला पक्ष है, भाव पक्ष है. जितना कहते हैं परफॉर्मिंग आर्ट है तो ज़्यादातर तो वेटेज परफॉर्मेंस की तरफ रहता है, लेकिन फिर भी जब हम उसमें डिग्री ले रहे हैं तो हम थ्योरी का, हमारे यहाँ जो करिकुलम है उसमें 3 पेपर थ्योरी के, 2 प्रैक्टिकल. उसमें फंडामेंटल आ जाता है, हिस्ट्री आ जाता है, अप्लाइड थ्योरी आ जाता है. तो बच्चे आजकल थोड़ा पसंद कम करते हैं, लेकिन हमारा एज ए हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उनको शास्त्र के बारे में भी पूरी जानकारी. बिकॉज क्या होगा कि शास्त्र नहीं पता है ना तो वो म्यूजिक को इतने अच्छे से समझ नहीं पाएंगे. तो भरत के नाट्य शास्त्र से लेकर संगीत रत्नाकर क्या था, शारंगदेव जी ने उसमें क्या लिखा है, ये सब विक्रमी पुस्तक मालिका की बंदिशें और सारी चीज़ें हम उनको बहुत इंटरेस्टिंग वे में बताते हैं, जिससे कि उनकी रुचि बनी रहे और वो थ्योरी में भी बहुत अच्छे से पढ़ सके.
1: और ऑटोबायोग्राफीज में कितने लोगों की ऑटोबायोग्राफीज है.
0: हाँ, कई बार बच्चे बोलते हैं कि मैम क्या पता, हमें पता ही नहीं उनके नाम, हम क्यों पढ़े. लेकिन फिर हम उनको बड़े प्यार से समझाते हैं कि देखो जो विद्वान हुए वो आपको तो पता होने चाहिए कितना स्ट्रगल करके उन्होंने क्या हासिल किया, तो तब उनको अच्छा लगता है और वो पढ़ते हैं. आजकल के जो है वो तो उनको समझ में आता है वही हरिप्रसाद चौरसिया जी हैं या अभी जसराज जी हैं या भीमसेन जोशी हैं, जिनको उन्होंने देखा है, उनके बारे में सुना है,

0: जो बहुत पुराने हैं उसमें उनको थोड़ा सा कम इंटरेस्ट रहता है, लेकिन उनको हम यही बताते हैं कि आपको इनसे प्रेरणा लेना है,
1: जी
0: सिर्फ ये नहीं है कि लिखना है और बस एग्जाम देना है, कि कहीं ना कहीं आपके जहन में रह जाएगा कि उन्होंने उसके लिए कितना संघर्ष किया, और उस जमाने में जब ज़्यादा साधन नहीं थे और उन्होंने कितना रिग्रस रियाज करके और वो सब अचीव किया है।
1: आजकल भी ये जमाने में, मतलब 21st सेंचुरी में भी, अभी राहुल देशपांडे जी है, मंगेश कारी जी है, उनकी वजह से ये जो यूथ है वो फिर से शास्त्रीय संगीत की तरफ बढ़ चुके हैं, ऐसा आपको लगता है?
0: बिल्कुल सही कहा आपने। राहुल देशपांडे जी का मैं देखती हूँ कि वो वसंतराव देशपांडे जी के नाती हैं, लेकिन उसके बाद भी संगीत, मुझे ऐसा लगता है कि संगीत में जो हमें अच्छा लगता है वो हमें करना ही चाहिए।
1: चाहिए।
0: तो आज वो फिल्मी गीत भी गा रहे हैं और क्लासिकल भी कर रहे हैं, तो यूथ बहुत पसंद कर रहे हैं, क्योंकि यूथ, आज के जो युवा हैं उनका जो इंटरेस्ट है वो केवल क्लासिकल की तरफ नहीं है। हम सिर्फ क्लासिकल से बांध के नहीं रख सकते, बहुत मतलब बहुत थोड़े लोग मिलेंगे जो केवल क्लासिकल करने के लिए तैयार हो जाएंगे, लेकिन जैसे हमारे यहाँ भी मैं देख रही हूँ माया सोमैया में अभी 40+ स्टूडेंट्स हैं, लेकिन वो सीख रहे हैं क्लासिकल बिकॉज उनको डिग्री लेना है, लेकिन उनका सबका इंटरेस्ट देखा जाए तो वो मुंबई में एक ही लक्ष्य लेके आए हैं, भगत सिंह। तो ये हम देख रहे हैं, इसलिए मुझे ऐसा
1: जी
0: लगता है कि हर तरह का गाना आना चाहिए, लेकिन शास्त्रीय संगीत का जो बेस है कुछ भी गाएं वो तभी अच्छा लगेगा जब आपको नॉलेज है, प्रॉपर श्रुतियों का ज्ञान है, तो आप बखूबी किसी भी तरह का संगीत गा सकते
1: लेकिन वो जो शास्त्रीय संगीत को जो ग्लैमर है, मतलब जो फिल्मी म्यूजिक को जो ग्लैमर है, वो शास्त्रीय संगीत को नहीं है। ये जो है इसके लिए वो, ये जो यूथ है वो इसलिए अट्रैक्ट होते हैं ज्यादातर फिल्मी संगीत की तरफ, जैसे आपने
0: हैं।
1: कहा।
0: हाँ बराबर बराबर, तो मेरा यही इंटेंशन है तेजस्वी कि शास्त्रीय संगीत से जो लोग डरते हैं
1: हाँ
0: या जो ऐसा समझते हैं कि बहुत डिफिकल्ट है या बहुत इंटरेस्टिंग नहीं है, उनकी टेंडेंसी दूर करना, मैंने इसीलिए 2017 से शुरू किया मेरा यूट्यूब चैनल, बिकॉज वो टाइम में पेंडेमिक में काफ़ी मतलब हमारे क्लासेस ऑनलाइन हो गए,
1: ऑनलाइन
0: हमने
1: होते थे।
0: सोचा भी नहीं था कभी कि हम ऑनलाइन सिखा पाएंगे शास्त्रीय संगीत, लेकिन वो टाइम ने ये सब सिखा दिया। और उसके बाद जो बंदिशें मैं सिखाती थी स्टूडेंट्स बोलते थे कि मैम वो हम ढूंढते हैं, क्योंकि आजकल तो गूगल का ज़माना है, कोई भी चीज़ हमने सिखाई वो गूगल करते हैं, तो मैडम नहीं वो जो आप सिखाते हैं वो हमें यूट्यूब पर नहीं मिलता है, तो प्लीज़ आप डालिए। तो मैंने उनको कहा कि मुझसे अच्छा काम बहुत लोगों ने किया है, कहने लगे नहीं आप जो बंदिशें सिखाते हैं वो नहीं मिल रही है। सो ऐसे स्टूडेंट्स के ही बोलने की वजह से मेरा यूट्यूब चैनल मैंने शुरू किया पेंडेमिक में, और बहुत अच्छा मुझे उसका कई लोग यही कहने लगे कि मैम जिनको गुरु नहीं मिल पा रहा अच्छे, तो इस वजह से हम सीख पा रहे हैं। तो वहाँ पर मैंने कुछ राग बेस्ड वीडियोस बनाए हैं और उनके ऊपर बॉलीवुड म्यूजिक में जो सॉन्ग्स आए हैं उनके भी बात
1: जरूर इसके बारे में आपसे अधिक जानकारी लेंगे। एक छोटे से ब्रेक के बाद फिर जुड़ते हैं सुनीता, डॉक्टर सुनीता गंगाडे मैडम से। आप सुनते रहिए आचार्य 90 FM।

0: टू द शॉर्ट ब्रेक, यू आर लिसनिंग टू आचार्य 90 FM योर ओन रेडियो। और आज हम डॉक्टर सुनीता गंगारेड्डी मैडम से बातचीत करें। मैम अभी पढ़ते हैं आपकी PhD की ओर। PhD में आपने बहुत सारे रिसर्च पेपर, मतलब उनके सब्जेक्ट भी बहुत अलग से हैं, उनके बारे में थोड़ा बताइए। और वो म्यूजिक थेरेपी का जो आपने हमारे कॉलेज में भी जो सेशन दिया, जो हम सारे अध्यापकों ने उसको बहुत सराहा, तो उसके बारे में वो आपको वो आइडिया आया कहाँ से कि कैसे लिंक करेंगे? आपने तो मेंशन किया पढ़ाते पढ़ाते वो आइडिया आपको आ गया, तो उसके बारे में हम दर्शकों को थोड़ा सा बता रहे हैं।
1: बहुत इंटरेस्टिंग तरीके से वो मेरे माइंड में आया था, वो मैं ज़रूर शेयर करूँगी। एक कॉन्फ्रेंस हुई थी इंटरनेशनल, जिसको SIES कॉलेज षणमुखानंद ने कोलैबोरेशन से ऑर्गेनाइज किया था, और प्लेस नहीं मिल रही थी उनको प्रॉपर। तो हमारे यहाँ सुमैया विद्या विहार ने उनको प्लेस अवेलेबल करवाई थी। तो हमारे यहाँ तक उस समय में सुधराजन सर के सर थे हमारे यहाँ, तो उन्होंने हमें सजेस्ट किया कि मैडम आप इसमें रिसर्च पेपर डालिए, आज इतना बड़ा कॉन्फ्रेंस हो रहा है। तो जैसे कि मैंने बताया, मेरा शुरू से इंटरेस्ट रहा था म्यूज़िक थेरेपी के वजह के ऊपर, तो मैंने उसमें एक रिसर्च पेपर डाला। और जब उसको प्रेजेंट करने का टाइम आया, तभी मैंने सोचा कि सब लोग ऐसे ही अपने अपने पेपर रीड करते हैं, लेकिन उसमें क्या मज़ा है? हम अगर परफॉर्मिंग एरिया से हैं, तो परफॉर्मिंग आर्ट से, तो हमें कुछ इंटरेस्टिंग तरीके से करना चाहिए। तो मैंने उसी रिसर्च पेपर को प्रैक्टिकली, और जो मैंने लिखा था उसमें, उसको मैंने प्रैक्टिकली गा के बताया। और वो साउथ इंडियन कम्युनिटी के सारे ऑडियंस थे, तो लेकिन इतना उन्होंने उसको अप्रिशिएट किया, वहीं से मुझे पहला कॉन्फिडेंस आया कि ये बहुत अच्छा है। और वो करके मुझे बहुत सेटिस्फेक्शन मिला, बिकॉज हम सब कुछ अपने लिए ही करते हैं, लेकिन ऐसा लगा कि बिना औषधि के अगर हम किसी को थोड़ा भी रिलैक्स फील करवा सकते हैं, तो ये बहुत अच्छी बात है। और तब से मैंने शुरू किया, और आज मुझे लग रहा है कम से कम 10 से 12 जगह पर मेरी ये म्यूजिक थेरेपी की सेशन हो चुके हैं।
0: मैंने भी सुना है, मतलब प्लांट्स ग्रो होते हैं, और ये जो पेशेंट्स हैं हॉस्पिटल्स में ज़्यादा करके म्यूजिक डाला जाता है ताकि वो सुन सके, और उसमें वो ज़्यादा रिकवर भी ज़्यादा फास्ट होते हैं। तो ये म्यूजिक थेरेपी एक अच्छा, इट वर्क्स इन डे टू डे लाइफ, वो भी सुनते। अगर सुबह में भी हम जब गाना सुनते हैं, तो हमारा पूरा दिन अच्छा जाता है, वो भी है। तो आप थोड़ा म्यूजिक थेरेपी का जो आपका सेशंस है, उसका थोड़ा डेमोन्स्ट्रेशन हमें देंगे?
1: ज़रूर ज़रूर। म्यूजिक थेरेपी में मैंने फिर जब मुझे इंटरेस्ट आया, तो मैंने थोड़ा सर्च किया कि ऑलरेडी कितना काम हुआ है इसके ऊपर। तो मुझे शशांक कट्टी जी, जो मुंबई में म्यूजिक थेरेपी पर बहुत काम कर रहे हैं, उनका मुझे बहुत अच्छा लगा। और उन्हीं से थोड़ा सा मैंने उनके वीडियोस के थ्रू भी मैंने थोड़ा सा रेफरेंस लिया, और फिर मैंने ये फाइंड आउट किया कि कौन से प्रॉब्लम्स के ऊपर कौन से राग इफेक्टिव हैं, और उन रागों का क्या प्रभाव है। सो मैंने कुछ कॉमन डिसऑर्डर चूज़ किए, और उसके ऊपर इफेक्टिव रागों को चूज़ किया, और फिर उसको इंटरेस्टिंग तरीके से, बिकॉज हम अपनी पसंद के अनुसार संगीत सुने तो वो ज़्यादा काम करेगा। सो उसकी एक क्लासिकल बंदिश, अगर आप मराठी सॉन्ग सुनना चाहते हैं तो मराठी गाने, भावगीत, नाट्यगीत, और कुछ फिल्मी गीत, तो हर एक की पसंद के अनुसार मैं वो गाने बताती हूँ। और जब मैं उनको गा कर बताती हूँ, और हम इस प्रोग्राम को लेते हैं, तो ऑडियंस भी बहुत एंजॉय करते हैं, क्योंकि उसमें उनका भी कंट्रीब्यूशन हो जाता है। तो इस तरीके से ये सेशन सोचा ही नहीं था, और शुरू हो गए, और बहुत जगह पर होते जा रहे हैं, और लोगों को पसंद आ रहा है मेरा काम।
0: तो थोड़ा वापस से गाना सुनना चाहेंगे आप सर? तो इसका रिलेटेबल थोड़ा, मतलब शास्त्रीय संगीत और फिल्मी म्यूजिक।
1: जैसे मैं म्यूजिक थेरेपी में स्ट्रेस के लिए रागे मन की बात करती हूँ, तो आजकल स्ट्रेस सभी को है। सो सबसे पहले थोड़ा सा स्वरूप बताती हूँ, क्योंकि ऑडियंस में से कई लोग जानकार भी होते हैं, और कई लोगों को कुछ भी नहीं पता होता है। सो छोटे छोटे फ्रेजेस लेकर मैं ऑडियंस को उसमें गाने के लिए बोलती हूँ। जैसे यमन राग की अगर हम बात करें, सो

0: और एक क्वेश्चन अभी अभी हम एंड पे है इंटरव्यू के, तो वो पूछना चाहूंगी कि आजकल के बच्चे बहुत ये नहीं करना चाहूंगी क्योंकि इट इज नॉट देयर फॉल्ट कि वो ज्यादा अट्रैक्ट होते हैं टेलीविजन के जो रियलिटी शोज है उनके ऊपर, क्योंकि उनके मतलब छोटे से समय में उनको नेम फेम मनी सब मिल जाता है। तो आप रियलिटी शो के जज भी रह चुके होंगे या फिर कहीं पे भी आप प्रतियोगिता में जाते हैं तो आप परीक्षक के रूप में जाते होंगे, तो बच्चों को आपको क्या मतलब एडवाइस देना है, क्या मार्गदर्शन करना है कि रियलिटी शो को आपको किस तरह से देखना चाहिए?
1: रियलिटी शो से डेफिनेटली संगीत का रुझान बढ़ा है, क्योंकि जब बच्चे क्लासिकल बेस्ड सॉन्ग्स गाते हैं तो जैसे फिल्मों में शास्त्रीय संगीत आने के कारण शास्त्रीय संगीत सीखने बहुत लोग आते हैं, जो मेरा विषय भी है PhD। तो इसी तरीके से रियलिटी शोज में देख के बच्चों को बहुत लगता है अरे मैं भी उनके तरह गाऊँ, इसलिए लोग ट्रेनिंग लेते हैं थोड़ा, लेकिन वो उतना सा मुझे लगता है सफिशिएंट नहीं है, क्योंकि जो थोड़े समय के लिए जो एक फेम मिलता है वो थोड़े समय बाद ही ख़त्म भी हो जाता है। अगर आपको लंबे समय तक टिकना है तो आपको प्रॉपर गुरु के साथ, गुरु के मार्गदर्शन में सालों तक सीखना होता है। मैं कहूँगी कम से कम 5-10 साल तो आपको उसका प्रॉपर गाइडेंस लेना होता है किसी गुरु, और उसके बाद भी प्रयास करना होता है, क्योंकि सीखना एक तरीके से सीख लिया लेकिन जब तक हम उसको डाइजेस्ट नहीं करेंगे, जिस तरीके से हम कहते हैं खाना खाना ही सफिशियंट नहीं है, उसको डाइजेस्ट करना है इम्पॉर्टेंट है। उसी तरीके से गुरु ने सिखा दिया है लेकिन जब तक हम उसको घंटों बैठ के रियाज नहीं करेंगे तब तक चीज़ें खुद से नहीं निकलेंगी, क्योंकि राग है ना, जब तक वो आत्मसात नहीं हो जाता है तब तक हम उसका इम्प्रोवाइजेशन बेहतर तरीके से नहीं कर पाएंगे। तो बच्चों में वो कमी है आजकल, उनको लगता है कि नहीं सब कुछ इंस्टेंट मिल जाए हमें, है ना। तो बहुत अच्छी कई प्रतिभाएं होती है जिनके पास इतना अच्छा सब कुछ है लेकिन प्रैक्टिस नहीं करते हैं, रियाज नहीं करते हैं, गुरु के पास नहीं जाते हैं, तो वो ज़्यादा लंबे समय तक नहीं टिकता है। तो मेरा यही गाइडेंस है कि प्रॉपर गुरु के पास शास्त्रीय संगीत की विधिवत शिक्षा लेनी चाहिए।
0: तो मैं ये पूछना चाहूंगी कि आजकल लाइव कॉन्सर्ट्स ज्यादा होते हैं, मतलब इंडिया में भी होते हैं बाहर भी होते हैं, और लाइव कॉन्सर्ट्स में ज्यादा आशा जी बहुत मतलब उन्होंने ज्यादा लाइव कॉन्सर्ट्स को ये किया है, तो आपका लाइव कॉन्सर्ट मतलब कैसी तैयारी करना चाहिए? अगर एक परफॉर्मर है, अगर वो लाइव कॉन्सर्ट में जैसे शंकर महादेवन जी का भी आपने जिक्र
1: जी
0: किया, वो भी इतना मतलब अच्छे से वो लाइव कॉन्सर्ट को मैनेज करना भी एक कला होती है, तो
1: जी
0: आप लाइव कॉन्सर्ट्स को अगर एक लाइव परफॉर्मर बनना है तो उसके लिए स्टेज परफॉर्मर बनना है तो बच्चों ने कैसी तैयारी करनी
1: सबसे
0: चाहिए?
1: पहले तो अगर आप संगीत में रुचि रखते हैं और परफॉर्मर परफॉर्म कर रहे हैं तो आपकी तैयारी हर तरह से होनी चाहिए, बिकॉज ऑडियंस कहाँ कैसे ऑडियंस है। एक आर्टिस्ट को मुझे लगता है कि हर तरह से तैयार रहना चाहिए,
0: जी
1: कि अगर परवीन सुल्ताना जी का मुझे एक बार याद है, एक कॉन्सर्ट मैंने अटेंड किया था, कि मैं एक चीज़ गाती हूँ और दर्शकों की नज़रों से समझ जाती हूँ कि दर्शक क्या चाहते हैं, है ना। तो प्योर क्लासिकल आर्टिस्ट हैं लेकिन धीरे से वो टर्न हो जाते हैं, फिर कुछ थोड़ा सा झप ताल या रूपक ताल की कोई बंदिश ले लेंगे बहुत बड़ा ख्याल डिटेलिंग ना करते हुए, और फिर वो ठुमरी या दादरा पे आ जाती हैं, या
0: जी
1: जैसे वो गाती हैं हमें तुमसे प्यार कितना।
0: हाँ
1: तो ऐसे ही राशिद खान जी का भी मैंने देखा कि राशिद खान जी भी हमेशा देख लेते थे कि ऑडियंस कैसी है, प्रॉपर
0: कैसी
1: क्लासिकल सुनने वाली ऑडियंस है तो वो 2 घंटा भी गाएंगे क्लासिकल, लेकिन जब उनको पता है कि नहीं ऑडियंस और आर्टिस्ट वही खड़ा होता है जो समझ जाए
0: हाँ
1: कि हाँ ये ऑडियंस क्या
0: टेस्ट
1: चाहती
0: क्या
1: है,
0: है। हाँ
1: इनका टेस्ट क्या है।
0: जी
1: तो मुझे लगता है कि कॉन्सर्ट करने के लिए हमें उस तरीके की तैयारी रखनी चाहिए कि ऑडियंस के मुताबिक क्या। वैसे तो कहा जाता है कि शास्त्रीय संगीत किसी को रिझाने के लिए नहीं है,
0: जी
1: ये तो ईश्वर की आराधना के लिए है। और आजकल का लेकिन मुझे ऐसा लगता है जैसे जैसे टाइम बदल रहा है, आज हम सिर्फ उसी भावना को लेकर नहीं चल सकते, हमें अगर कॉन्सर्ट करना है तो हमें थोड़ा सा इस बात के लिए अवेयर रहना चाहिए कि ऑडियंस क्या चाहते हैं, तो ये बहुत इम्पोर्टेंट बात है।
0: थैंक यू सो मच डॉक्टर सुनीता जी फॉर जॉइनिंग अस ऑन आचार्य 90 FM। और अभी हम इस इंटरव्यू का आई थिंक एंड आपके सुरीले गानों से करते
1: जरूर
0: हैं। आई रिक्वेस्ट यू टू से समथिंग।
1: मैं एक फिल्मी गाना सुना देती हूँ थोड़ा
0: जी
1: सा, में जो मुझे बहुत पसंद है।

शाम रोक लई रोक लई रोक लई थाई शाम रोक लई और चक मुख चूम लई मुख चूम लई मुख चूम लई सर से मोरी चुनरी गई गई गई सर से मोरी चुनरी गई सरक सरक सरक, सरक।

दधकी भरी मटकी, दधकी भरी मटकी, दधकी भरी मटकी ले जात रही डगर बीच। आहट सुन, आहट सुन, आहट सुन, जियरा गयो धड़क धड़क।

0: हेलो, मेरा नाम सुपर्णा कश्यप है और मेरे साथ आज है मिस मुक्ता जोशी। हम दोनों भी काउंसलर्स हैं। आज हम लोग एंटी बुलिंग इस टॉपिक में बात करने वाले हैं। स्टैटिस्टिक्स के हिसाब से रफली 20% ऑफ स्टूडेंट्स इन कॉलेजेस एक्सपीरियंस बुलिंग। एंड बुलिंग अलग अलग तरीके का हो सकता है, वर्बल बुलिंग हो सकता है, फिजिकल बुलिंग हो सकता है, और आजकल जैसे सोशल मीडिया का ज़माना है तो साइबर बुलिंग भी एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो होती है आजकल। तो मेरा पहला क्वेश्चन मुक्ता मैम आपसे ये है कि बुलिंग इंडियन कॉलेज में किस प्रकार में दिखाई देता है?
1: थैंक यू इंट्रोड्यूस करने के लिए। मुझे ऐसा लगता है कि बुलिंग शब्द सुन के हमें हमेशा ऐसा लगता है कि वो कोई बहुत बड़ी चीज़ होती है, दिखने में बहुत बड़ी होती है। वैसे तो वो बड़ी है, बट वो कभी कभी दिखने में उतनी बड़ी नहीं होती। जैसे हमने देखा है, थ्री इडियट्स मूवी देखा है या मुन्ना भाई MBBS देखा है, उसमें कैसे हमें रैगिंग दिखाई जाती है। तो हमें ऐसा लगता है कि अगर वैसा होता है तो उसको ही हम बुलिंग बोल सकते हैं, बट वो जरूरी नहीं है। बुलिंग एकदम छोटी छोटी चीजों में भी देखी जा सकती है, जैसे किसी का मजाक उड़ाना, राइट? इसको भी हम बुलिंग के अंतर्गत ही लाते हैं। तो कोई किसी का बोलने का तरीका होता है, किसी कोई कहाँ से आया हुआ है जिनका नेटिव विलेज कहीं और है, उसका मजाक उड़ाना, कास्ट का मजाक उड़ाना, वो जिस तरीके के कपड़े पहनते हैं, जिस तरीके का खाना खाते हैं, उसका मजाक उड़ाना, ये बेसिक बेसिक चीजें हैं जो बुलिंग के अंतर्गत आती है। हमें ऐसा लगता है ये तो क्या है, ये तो एकदम छोटी चीज है, एक दूसरे को चिढ़ाना तो नॉर्मल है। बट कई बार ऐसा देखा गया है कि ये चीज जब बार बार होती है, हमें लगता है हम अकेले हैं जो ये कर रहे हैं, बट एक इंसान के लाइफ में बहुत लोग होते हैं जो सेम चीज उसके लिए करते हो, तो उसकी वजह से वो ज्यादा बढ़ भी सकता है। तो हम उसमें से सिर्फ एक हिस्सा हो सकते हैं, लेकिन वो हिस्सा भी बहुत बड़ा बन सकता है। उसके अलावा मुझे लगता है कि एक दूसरे के साथ दूसरे के बारे में गॉसिप करना, किसी को ग्रुप से अलग करना, उनको आइसोलेशन में रखना, ग्रुप प्रोजेक्ट्स में उनको पार्ट नहीं लेना, जानबूझ के उनको नहीं मुझे ये इंसान नहीं चाहिए मेरे ग्रुप में ऐसे बोलना, किसी का मजाक उड़ाना, किसी की एक्टिंग करना, ये जो सारी चीजें हैं एकदम सिंपल एग्जांपल्स है बुलिंग के जो हो सकते हैं। इवन व्हाट्सएप ग्रुप पे अगर आप किसी को चिढ़ा रहे हो, जो हमें लगता है हम चिढ़ा रहे हैं, बट वो भी बुलिंग के अंतर्गत आता है, वो भी साइबर बुलिंग के अंडर आता है। तो ये कुछ तरीके हैं जो हमें दिखते हैं यूजुअली कॉलेजेस में। हमें लगता है सब हंसी मजाक है, उसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, बट बुलिंग कभी भी ना मजाक नहीं होता। मतलब वो हमारे लिए शायद मजाक होता है जो दूसरे का मजाक उड़ा रहे, लेकिन जिसका मजाक उड़ रहा है उसके लिए वो कभी भी मजाक नहीं होता। हम सोचते हैं कि अच्छा शायद हो सकता ऐसे। और दूसरी चीज ऐसे है कि बुलिंग तब होता है जब कोई अपनी पावर दिखाना चाहता है किसी और को, सामने वाले को, अपनी अथॉरिटी जताना चाहता है, मैं कैसे सबसे बेहतर हूँ, मैं कैसे सबसे ज्यादा ताकतवर हूँ, इन चीजों को दिखाने के लिए ज्यादातर बुलिंग देखा जाता है। जरूरी नहीं है कि ये बुलिंग सिर्फ फ्रेंड्स में हो या पियर्स में हो, ये बुलिंग कभी कभी ऐसा भी होता है हायर अथॉरिटी के लोग भी लोअर अथॉरिटी के लोगों पे बुलिंग कर सकते हैं। तो बुलिंग अलग अलग तरीके का होता है जैसा मैंने अभी बताया। हमारे इंटेंशंस क्या है उससे ज्यादा इम्पॉर्टेंट हमारे एक्शंस क्या है, उस पर हमें ध्यान देना होता है। तो वही मुझे लगता है कि ये सारे चीजें ध्यान में रखते हुए ये हमें दिखता है अक्सर कॉलेज में होते हुए।
0: जैसे कि आपने एक बहुत इम्पॉर्टेंट डिफरेंस बताया कि रैगिंग जो एक बहुत हाई लेवल में होता है वर्सेस जो बहुत छोटी छोटी चीजें होती है जो रोज होती है जिनको हम बहुत इजीली अनदेखा भी कर देते हैं, तो ये सारी चीजें भी बुलिंग के अंडर आती है। और जब कोई एक्सपीरियंस करता है बुलिंग तो उसके मानसिक स्वास्थ्य पे किस तरह का प्रभाव पड़ सकता है?
1: कई बार मैंने ना लोगों को बोलते हुए सुना है, बच्चों को बोलते हुए सुना है कि ये ना ज्यादा ही दिल पे ले लेती है, या फिर ये ना ओवर थिंक करता है, ये क्या छोटी सी बात है, इसके बारे में क्या इतना सोचना है। तो मैं ये बताना चाहूंगी कि बुलिंग, अभी हम बात कर ही रहे हैं तो हम काउंसलर्स हैं, अब हम बुलिंग के बारे में बात क्यों ही कर रहे हैं, तो ये सवाल मुझे काफी अप्रोप्रिएट लगता है कि उसका मेंटल हेल्थ पे क्या असर होता है। और हाँ, जरूर होता है। तो कभी कभी हमें ऐसा लगता है कि बुलिंग मतलब क्या है, एक छोटा सा चिढ़ाना हो गया, वो एक बैड मेमोरी है शायद किसी के लिए, बट ये कभी भी ना सिर्फ बैड मेमोरी नहीं रहती है, वो दिल पे लगता है। और जैसे मैंने बोला कि जब वो बार बार होते रहता है तो उसका बहुत ज्यादा बड़ा इफेक्ट हमारे मेंटल हेल्थ पे, किसी के भी मेंटल हेल्थ पे हो सकता है। एंग्जाइटी होना, बहुत ज्यादा सोचते रहना, इतना सोचना, अपने आप का कॉन्फिडेंस लूज करना, अपनी आइडेंटिटी को जिस तरीके से लोग हमें पुकारते हैं उस तरीके से बनाना। अगर कोई किसी को यार तू तो बहुत पतला है बोलते रहेगा, तो उनकी आइडेंटिटी बन जाती है कि यार मैं बहुत पतला हूँ, मैं मतलब मेरे में कुछ नहीं है, वही मैं हूँ, राइट? तो वो आइडेंटिटी बन जाना। ये भी देखा गया है कि एकेडमिक्स में, पढ़ाई में भी कॉन्फिडेंस उसकी वजह से लूज होने के बहुत चांसेस होते हैं, क्योंकि ऑल्दो वो एक छोटी सी चीज लोगों को लगती है, वो इस इंसान के लिए बहुत बड़ी चीज हो सकती है। बहुत बच्चों ने हमें ऐसा अभी तक बताया है कि वो क्लास में पार्टिसिपेट नहीं करते क्योंकि उनको डर लगता है कि लोग उनके बात करने के तरीके पे हंसेंगे। आप इमेजिन करो कि कोई इंसान जिसको सब पता है, इंटेलिजेंट है, बट वो क्लास में बात क्यों नहीं कर पा रहा है, क्योंकि उनका मजाक उड़ाया जा रहा है। उससे भी बहुत बड़ी बात ये होती है कि लोगों को, चलो अभी उनको पता है कि उनका उनको बुरा लग रहा है, उनके साथ बुलिंग हो रहा है, बट उसके बारे में बात करने में भी उनको शर्म आती है क्योंकि उनको लगता है कि कहीं ये सच तो नहीं है मेरे बारे में। तो वो ना किसी से बात कर पाते हैं, ना खुल पाते हैं उसके बारे में, कुछ शेयर कर पाते हैं, तो वो अंदर ही अंदर रह के घुटन जैसे होने का भी चांसेस होता है। इसीलिए हम ये कर रहे हैं कि अगर आपको बुलिंग से आपके ऊपर कोई परिणाम हो रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप वीक हो, बुलिंग इज अ रॉन्ग थिंग, तो वो हमें समझना बहुत जरूरी है। आप इंसान हो और हर इंसान को बुलिंग की वजह से तकलीफ होने के चांसेस है।
0: तो एक जो चीज़ आपने बताई कि जब एक कमेंट बार बार किसी को बोला जाता है, उनकी पूरी पहचान ही उस एक चीज़ में रह जाती है, बाकी अचीवमेंट्स भी कुछ रहेगा तो वो उसको रिकॉग्नाइज नहीं कर पाते, खुद को अप्रिशिएट नहीं कर पाते, और ये फिर बहुत डिफिकल्ट भी हो जाता है इन चीज़ों से कोप करना कि कैसे खुद को संभाले, कैसे खुद को सपोर्ट दे, कैसे हम इस चीज़ से उभर के आए। तो क्या ऐसी चीज़ें हैं जो हम कर सकते हैं जिससे कि हम खुद को सपोर्ट करें इस सिचुएशन में?
1: ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। मुझे लगता है कि हमें ऑफ कोर्स किसी भी इंसान को, हमारे कम्युनिटी का, हमारे आसपास के लोगों का सपोर्ट जरूरी होता है। तो जब मैं ये सवाल का जवाब दे रही हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ हमें ही उस पे काम करना है, लेकिन अगर हमारे साथ बुलिंग हो रहा है तो हम क्या कर सकते हैं, एटलीस्ट हमारे ख्याल रखने के लिए, वो मैं यहाँ पे जरूर बता सकती हूँ। तो पहली चीज तो ये है कि ये आपकी गलती नहीं है। कई बार ऐसा होता है कि जो इंसान को बुली किया जाता है, उनको लगता है मैंने ही कुछ गलत किया होगा जिसकी वजह से मेरे साथ ऐसा हो रहा है। तो ये समझिए कि कोई भी बुलिंग डिजर्व नहीं करता, ना आप ना कोई और, राइट? और दूसरी चीज ये है कि अगर आप सैड, एंग्री, कंफ्यूज फील कर रहे हो, तो वो भी बहुत नॉर्मल है। अपने इमोशंस को रोकिए मत, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हम लोग बोलते हैं कि यार ये तो मजाक है, तुम्हें इतना क्या हो रहा है, इतना गुस्सा होने का क्या जरूरत है, और हमें लगता है कि हाँ हमें गुस्सा नहीं होना चाहिए, और हम अपने गुस्से को अंदर दबा देते हैं, और वो इमोशंस दबाने की वजह से और ज्यादा अंत में उभर के आते हैं। दूसरी चीज ये है कि इसके बारे में किसी से बात करो, जो भी, जिस इंसान को भी आप भरोसा करते हो, ट्रस्ट करते हो, उनसे बात करो। आपके प्रोफेसर हो सकते हैं, आपका कोई कजिन हो सकता है, आपके कोई दोस्त हो सकते हैं। जरूरी नहीं है हमेशा आपको किसी प्रोफेशनल काउंसलर या साइकोलॉजिस्ट के पास ही आना है, आप किसी से भी बात कर सकते हो, लेकिन इसके बारे में बात जरूर करो। आपका जो इमोशनल एक आपको लोड फील होता है ना, उसकी वजह से वो थोड़ा कम होने में उससे मदद हो सकती है। तीसरी जो चीज है, अगर आप आपके साथ होने वाले बुलिंग को डॉक्यूमेंट करते हो, उसको लिख के रखते हो कि ये कब हुआ था, कौन से डेट पे हुआ था, किसने किया था, सिचुएशन क्या था। तो अगर आप कभी आगे जाके कंप्लेंट करना चाहते हो, इसमें ये चीज बहुत काम आ सकती है कि आप उसको कंप्लेंट भी आगे रेज कर सकते हो। हर कॉलेज में कंप्लेंट रेज करने का तरीका होता है, कहीं भी देखा जाए तो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में भी होता है, तो आप उस पर कंप्लेंट

0: ट्रेस कर सकते हो। फाइनली बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है कि अपने आप को डिफेंड करने का एक तरीका ढूंढना। मुझे पता है कि ये बहुत आसान नहीं है, और जब कोई ऐसी चीज़ हो रही होती है, स्पेशली आपके साथ बुलिंग हो रहा होता है, तो उस समय हम अपने आप को डिफेंड करना, उतनी ताकत लाना उतना मुश्किल है। लेकिन अगर आप में वो ताकत आती है, आप ला पाते हो, तो जरूर अपनी बाउंड्रीज सेट कीजिए। सामने वाले को सीधे बताइए कि मैं इस चीज से कंफर्टेबल नहीं हूँ। मुझे पता है कि उसके परिणाम हो सकते हैं, लेकिन वो परिणाम अगर आपको लगता है कि आप भुगतने के लिए ठीक है आपके लिए, तो आप ये जरूर कीजिए। सामने वाले को ये बताइए कि ये ठीक नहीं है, मैं ये सह नहीं सकता, ये मेरे लिए बहुत दुखद है, ये मुझे बहुत डर लग रहा है। ये बताने से एटलीस्ट ये जायज होता है कि आपने अपनी तरफ से कोशिश की है कि आप इस चीज को रोक पाओ। और आगे जाके अगर कोई बोलता है कि आपने तो कुछ बोला ही नहीं, हमने ऐसा किया, तो तब आपके पास एटलीस्ट ये है कि आपने बोला है लेकिन फिर भी वो रुके नहीं। फाइनली अगर आपके कॉलेज, स्कूल कैंपस में कोई सपोर्ट सिस्टम हो, जैसे कुछ कॉलेजेस में एंटी बुलिंग कमिटीज होते हैं, एंटी रैगिंग कमिटीज होते हैं, तो ऐसे कमिटीज का भी आप इस्तेमाल कर सकते हो। अपने लोग ढूंढो जो अपनी बातें सुनते हैं, है ना। तो ये कुछ चीजें हैं जो आप कर सकते हैं। एंड फाइनली अपने मेंटल हेल्थ के लिए आप क्या कर सकते हो, मान लो कि आप कुछ भी नहीं कर पाए, हो सकता है ना, कभी कभी सिचुएशन ऐसा आता है, तो एक कुछ भी नहीं हो पाया, तो एटलीस्ट हमारा ख्याल रखने के लिए एटलीस्ट हम एक जो भी आपको अच्छा लगता है वो कीजिए। कोई लोग वॉक के लिए जाते हैं, उनका मन शांत होता है। कोई लोग जर्नल करते हैं, अपनी डायरी में लिखते हैं अपने ख्याल, अपने इमोशंस अलग निकालते हैं बाहर। मेडिटेशन करना, गाने सुनना, म्यूजिक सुनना, अपने दोस्तों के साथ टाइम बिताना, या फिर ये भी कर सकते हैं कि जैसे प्रोफेशनल काउंसलर्स होते हैं, उनके पास भी जाने का एक ऑप्शन हो सकता है। और ये ध्यान में रखिए कि स्ट्रगल करने का मतलब ये नहीं है कि आप वीक हो। हर कोई जिंदगी में स्ट्रगल करता है, लेकिन आप जब हेल्प मांगते हो या किसी से हेल्प लेते हो, वो आपको स्ट्रांग बनाता है। तो बिल्कुल हेल्प लेने में हिचकिचाना नहीं है।
1: थैंक यू मैम, ये आपने एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात आगे रखी कि हेल्प मांगने से आपको कोई कमज़ोर नहीं बनाता है। तो ये बहुत ज़रूरी मैसेज है जो हम आज पहुंचाना भी चाहते हैं अपने बच्चों के लिए। और एक और चीज़, जैसे आपने बताया कि सपोर्ट का जिम्मेदारी उस इंसान पे नहीं होना चाहिए जो बुली हो रहा है। ये एक कम्युनिटी जैसी एनवायरनमेंट हमें तैयार करनी है कि जहाँ हम सब एक दूसरे का सपोर्ट कर सके। तो मैम, मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि ऐसी क्या चीज़ें हैं जो हम कर सकते हैं कि हम किसी का सपोर्ट करें जो बुली हो रहा है, हम उसको कैसे सपोर्ट करें?
0: ओके, कई बार ऐसा होता है कि हमें ऐसा लगता है कि मैं तो एक इंसान हूँ, मैं क्या ही कर सकती हूँ। और यही जो सोच है वो हमें कुछ करने से रोकती है। पहली बात तो ये समझना जरूरी है कि बहुत बड़ा स्टेप लेने की कोई जरूरत नहीं है। अगर आप छोटा सा भी स्टेप लेते हो, तो वो भी एक सपोर्ट के तरीके से एक इंसान के लिए बहुत बड़ा हो सकता है। तो जब बुलिंग हो रहा है, तब जाके झगड़ा करना, इतने बड़े स्टेप्स लेने की भी जरूरत नहीं है। मैं तो कहती हूँ कि बस अगर कोई बुली हो रहा है, तो बाद में जाके उनको, उनसे बात करना, उनको बताना कि मैं तुम्हें सपोर्ट करती हूँ, मैं तुम्हारे बारे में सोच रहा हूँ, मैं जानती हूँ कि जो तुम्हारे साथ हुआ वो सही नहीं हुआ। इतनी चीजें सिर्फ उनको बताना और उनको ये महसूस कराना कि उनके साथ भी कोई है जो उनको सपोर्ट करता है, वो भी एक बहुत बड़ी चीज हो सकती है। प्राइवेटली उनके साथ जाके एक बार चेक इन करना कि तुम ठीक तो हो ना, तुम्हें कुछ हेल्प चाहिए क्या, मैं कुछ कर सकती, ये चीजें पूछना, इनसे भी बहुत फर्क पड़ सकता है। अगर वो आपको कुछ बता रहे हैं और उनका उसमें कोई ओपिनियन है, वो आपको कहानी बता रहे हैं कि आप उनके साथ क्या हुआ, तो उसको बिना जज किए सुनिए। उससे क्या होता है कि हम ना थोड़ा क्या, हमें ऐसा लगता है कि हमें सही या गलत में जाना चाहिए, सच या झूठ में जाना चाहिए, लेकिन उसकी कोई जरूरत नहीं होती है। वो इंसान को आप सिर्फ सुनोगे एकदम शांत मन से बिना किसी जजमेंट के, तो वो भी उनके लिए बहुत सपोर्टिव हो सकता है। अगर आप इतना कर सकते हैं कि अगर कोई बुली कर रहा है और उस बुली को आप साइलेंट कर सकते हैं, वही के वही बोल सकते हैं कि ये सही नहीं कर रहे हो, या फिर यार दूसरों का मजाक उड़ाना सही बात नहीं है, ऐसे अगर आप उन बुली को भी बता सकते हो तो वो बहुत बड़ी बात हो सकती है। अपार्ट फ्रॉम दैट मुझे ऐसा लगता है कि जरूरी नहीं है कि जैसा मैंने बोला कि आप जाके एकदम झगड़ा शुरू कर दो। सिर्फ वो सिचुएशन जब हो रही होती है उसको बीच में तोड़ना, उसको इंटरप्ट करना, उतना ही अगर आप कर पाए तो भी बहुत बड़ी बात है। फॉर एग्जाम्पल अगर कोई बुली हो रहा है तो उनको बोलना कि अरे छोड़ना, चल मेरे साथ, ऐसे बोल के उनको वहां से लेके जाना ताकि वो और आगे बुली ना हो, वो भी एक बहुत बड़ी बात हो सकती है। ये समझना भी जरूरी है कि जो बुली कर रहे हैं वो भी कभी कभी अपने ही खुद के मेंटल हेल्थ के इश्यूज से गुजर रहे होते हैं, उनको भी कोई इनसिक्योरिटी हो सकती है, एंग्जाइटी हो सकती है, जिसकी वजह से वो ये सब कर रहे हैं। तो कई बार कन्फ्रंटेशन के जगह वो सिचुएशन को काम करना ज्यादा असर करता है। तो इस ये कुछ तरीके हैं जिनसे हम या हम कोई भी अपने आसपास अगर बुलिंग हो रहा है तो उसको सपोर्ट कर सकता है।
1: बस जो एक वो फीलिंग होती है कि मैं अकेला नहीं हूँ, मेरे साथ कोई है, ये एक चीज ही बहुत ज्यादा ताकत दे सकती है हमें किसी भी चीज से गुजरने के लिए।
0: बिल्कुल।
1: और इसी के चलते हम कॉलेज में एज अ कम्युनिटी हम क्या कर सकते हैं कि हम एक सपोर्टिव कल्चर बिल्ड करें जहाँ पे बुलिंग को हम नो ऐसा हम कर सके कि नहीं ये करना ही नहीं, और हम एक कॉलेज के लिए एक सपोर्टिव कम्युनिटी कैसे बना सकते हैं।
0: इमेजिन करो यार कि एक कॉलेज जहाँ पे हर कोई एक दूसरे को सपोर्ट कर रहा है, ऐसी कम्युनिटी बनी है जहाँ बुलिंग के लिए कोई जगह ही नहीं है। तो जब मैं ऐसा इमेजिन करती हूँ तो मुझे, और मैं बोलती हूँ कि ये एकदम आइडियल है, शायद वहां तक पहुंचने में बहुत साल लगेंगे, कब पहुंचेंगे पता नहीं, लेकिन वो एनवायरनमेंट क्रिएट करना हम अभी से शुरू कर सकते हैं। तो वो कैसे कर सकते हैं? बेसिक एकदम छोटी छोटी चीजों से, जैसे क्लास में आप किसी को मिलते हो तो उनको हेलो बोलना, आप कॉरिडोर में चल रहे हो तो कोई भी सामने दिखता है, आंखों में आंखें मिलती है तो एक दूसरे को हेलो बोलना, ग्रीट करना, गुड मॉर्निंग, टीचर्स को ग्रीट करना, टीचर्स ने स्टूडेंट्स को ग्रीट करना, राइट? कोई नया स्टूडेंट आया है कॉलेज में और पहले उनके कोई दोस्त नहीं है तो उनके साथ जाके बैठना, उनको इंक्लूडेड फील कराना, रादर देन कोई और आके उनको बुली करना शुरू करे उसके पहले ही हम जाके उनको इंक्लूडेड फील करा सकते हैं। तीसरा है कि कोई अगर अपने आप को सबके सामने लाके कोई परफॉर्मेंस कर रहा है, किसी चीज में भाग ले रहा है, तो उनको अप्रिशिएट करना, वो भी एक बहुत, हमें लगता है कि वो ये कौन करता है ऐसे, पर वो करना एक बहुत बड़ी बात हो सकती है उस इंसान के लिए। किसी को कोई पढ़ाई का टॉपिक समझ में नहीं आ रहा है तो उनको वो समझाना, ऐसे छोटे छोटे जो जेस्चर्स होते हैं उससे भी बहुत बड़े परिणाम होते हैं। तो मैं ये बोलती हूँ कि बिल्कुल भी ऐसा मत सोचिए कि मेरे एक की वजह से क्या होगा, हमारे एक की वजह से और लोग इंस्पायर होके सिमिलर बिहेवियर ला सकते हैं। तो ये मुझे लगता है कि हम अपने कॉलेज के लिए छोटी छोटी चीजों के थ्रू ला सकते हैं।
1: और जैसे आपने बोला ये काफी छोटी छोटी चीजें हैं जो हम रोज के इसमें सोचते हैं क्या ही हो जाएगा करने से, क्या फर्क पड़ेगा इससे, लेकिन ये बहुत छोटी छोटी चीजें ही है जो आगे जाके फर्क लाएंगे। सो एनी फाइनल थॉट्स मैम टू कंक्लूड दिस?
0: मुझे लगता है कि कोई भी छोटा महसूस करे ये हमें नहीं चाहिए। हमें चाहिए कि अगर हर किसी के पास बदलाव लाने की पावर है तो हम उस पावर को यूज करेंगे। तो काइंड रहिए एक दूसरे के साथ। चेंज आ सकता है, इसके लिए आप रेडी रहिए, उसके उसमें बिलीव कीजिए। कुछ गलत हो रहा है तो उसके अगेंस्ट बोलिए। कोई अगर स्ट्रगल करते हुए आपको दिख रहा है तो उनको मदद का हाथ बढ़ाइए। इसी से हम अपनी कम्युनिटी एक सेफ कम्युनिटी बना सकते हैं, जहाँ पे इंसान आराम से सांस ले सकता है और एंजॉय कर सकता है, पढ़ाई कर सकता है, तो बाकी की चीज़ें उसके बीच में ना आए। हर कोई मदद और रिस्पेक्ट डिजर्व करता है, तो यही मेरे लास्ट थॉट रहेंगे।
1: थैंक यू मैम, थैंक यू समय निकाल के इस बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पे आज बात करने के लिए, एंड थैंक यू आचार्य 90 FM हमें ये प्लेटफॉर्म देने के लिए।
0: और अगर कोई भी आपको कमेंट्स है इसके बारे में तो आप जरूर आचार्य।
2: हॅलो, हाय, नमस्कार श्रोते आणि प्रेक्षक हो, मी आरजे कोमल तुमच्या सगळ्यांचं स्वागत करते। तुम्ही ऐकत आहात, पाहत आहात आचार्य 90 FM युअर ओन रेडिओ। श्रोते हो, आचार्य 90 FM माध्यमातून आपण नेहमीच वेगळ्या वेगळ्या मुलाखती अनेक दिग्गज मान्यवर यांना भेटत असतो, त्यांच्याशी संवाद साधत असतो आणि त्यांच्या मार्फत विविध विषय जे आहेत ते अनेक लोकांपर्यंत पोहोचवत असतो। आजचा आपला विषय हा तसाच खास आहे। असं म्हणतात या समाजामध्ये आल्यानंतर आपण या समाजाचं काहीतरी देणं लागतो आणि ही भावना मनामध्ये ठेवून लोक आश्रम संस्था जी आहे, जी गेली अनेक वर्ष ठाण्यामध्ये कार्यरत आहे आणि आज खरं तर लोक आश्रम ही केवळ संस्था नाही तर समाजासाठी कार्य करणारी सुरू केलेली एक चळवळ आहे आणि ह्या चळवळीचं नेतृत्व ज्यांनी स्वीकारलेलं आहे ते अर्थात डॉक्टर अभिषेक राणे सर आज आपल्यासोबत जोडलेले आहेत। सर, खूप खूप स्वागत आहे तुमचं। बऱ्याच वेळेला लोकाश्रम हे नाव आमच्या कानावरती आलेलं आहे, आम्ही अनेक विविध कामं पाहिलेली आहेत, ऐकून आहोत। खरं तर असं म्हणतात की हल्ली आपल्या बाजूच्या घरात काय चाललंय हेही बघायला आपल्याला वेळ नसतो, पण लोकाश्रमच्या माध्यमातून तुम्ही अनेक विविध कामं जी आहेत लोकांच्या हिताची, लोकांच्या उपयोगासाठीची कामं करत आलेले आहात आणि या संस्थेचं उद्दिष्ट आणि प्रेरणा हा केवळ समाजाच्या हिताचा आहे आणि हा विचार आणि ही प्रेरणा घेऊन तुम्ही पुढे चाललायत, अनेकांना सोबत घेऊन पुढे चाललेला आहात। खरं तर तुमचं पुन्हा एकदा मी आचार्य 90 FM वरती स्वागत करेन आणि आजच्या या मुलाखतीला सुरुवात करूयात। मुलाखत म्हणणार नाही, मला बऱ्याच गप्पा मारायच्या आहेत, बरेच विषय जाणून घ्यायचे आहेत तुमच्याकडून। तर हे नेतृत्व सांभाळताय तुम्ही, हे नेतृत्व सांभाळत असताना जेव्हा ही जबाबदारी स्वीकारली काय वाटलं, काय सांगणार?
3: सर्वप्रथम मी आचार्य 90 FM आभार मानेन की तुम्ही या गोष्टीची दखल घेतलीत आणि मला इथे आज तुमच्याकडे बोलवलं, त्याबद्दल तुमचे धन्यवाद। आणि सर्वप्रथम मी तुमच्या सर्व व्ह्युअर्सना आणि लिस्नर्सना गुढीपाडव्याच्या आणि नवीन वर्षाच्या येणाऱ्या खूप खूप लक्ष लक्ष शुभेच्छा देईन। आणि लोकाश्रम हे जे आम्ही सुरू केलं, लोकाश्रमची जी काही संकल्पना होती ही काही ओव्हरनाईट नव्हती, एका रात्रीत काही सुचलेलं नव्हतं। आणि मी नेहमी सतत म्हणत असतो माझ्या बऱ्याचशा इंटरव्ह्यूज मध्ये की समाज कार्य हे काही प्लॅन करून करता येत,
2: बरोबर
3: ते इनबिल्ट असतं तुमच्यामध्ये, की आज आपण रात्री झोपलो आणि म्हणालो मी सकाळी उठून समाज कार्याला लागतो असं काही नाहीये। त्यामुळे तुम्हाला मनापासून आलेली जी काही भावना आहे लोकांप्रतीची, एक मदतीचा हात, त्यामागे ती संकल्पना होती आणि असं करता करता लोकाश्रमची स्थापना झाली।
2: सर, खरं तर 2021 पासून हा तुमचा प्रवास सुरू झाला। हा प्रवास सुरू करताना अर्थात आपल्याला लोकांच्या हिताचा विचार करायचा आहे हा हे तर तुमच्या बॅक ऑफ द माइंड कुठेतरी होतच, पण जेव्हा हा प्रवास सुरू झाला, हा प्रवास सुरू झाल्यानंतर आजवर तुम्हाला अनेक लोक येऊन भेटली असतील, अनेक लोक तुमच्यासोबत जोडली गेली असतील, या प्रवासाची सुरुवात कशी झाली आणि जेव्हा सुरुवात होते, आणि असं म्हणतात की प्रत्येक गोष्टीची एक सुरुवात व्हावी लागते, जसं एखादं छोटंसं बीज रोवलं की त्याचं कुठेतरी रोपट्यामध्ये मोठ्या नंतर त्याला पालवी फुटते आणि त्याचा विस्तार वाढत जातो, तसंच आपल्या संस्थेचंही आहे। सुरुवात कशी होती आणि सुरुवातीचा काळ कसा होता?
3: कोविडमध्ये या गोष्टीची सुरुवात झाली। मी माझं शिक्षण लंडनला, मी माझं वैद्यकीय शिक्षण लंडनला केलं आणि कोविडची पहिली लाट ज्यावेळेला आपल्याकडे आली त्यावेळेला मला असं एक आतून खरखर वाटलं की माझ्या देशाला माझी गरज आहे। त्यामुळे मी तात्काळ इथे मुंबईत आलो आणि कोविडमध्ये ही सेवा सुरू केली, लोकांना मोफत उपचार, कारण त्यावेळेला परिस्थिती आपल्याकडे अशी होती की बेड्स मिळत नव्हते, लोकांना बरेचसे मेडिसिन्स मिळत नव्हते, उपचार मिळत नव्हते, फॅमिलीज डिस्टर्ब होत्या, तर तिथून ही सुरुवात झाली। आणि काही असे छोटे मोठे किस्से घडत गेले की ज्यांनी ड्रास्टिक चेंज केला आमच्यामध्ये, की एक गृहस्थ आमच्याकडे आले आणि परिस्थिती अशी होती की पेशंट ऍडमिट करायला अँब्युलन्स नाहीये, तर त्यांनी धाव घेतली, स्थानिक काही लोकप्रतिनिधी असतात किंवा असे काही कार्यकर्ते असतात, सामाजिक कार्यकर्ते, की बाबा आम्हाला अँब्युलन्सची गरज आहे, तर त्यावेळेला त्या गृहस्थांकडे 1800 रुपये मागण्यात आले। तो काळ असा होता की मला असं वाटतं की काही वेल सेटल्ड लोक होती आणि एक अँब्युलन्स ज्या व्यक्तीने तुम्हाला 5 वर्ष निवडून दिलेलं आहे,

0: फिलहाल मैंने बताया था उसको ऑर्किड नहीं पसंद.
1: रियली?
0: और केक?
1: 5 मिनट्स, आई विल बी बैक.
0: अरे गाइस जल्दी करो, वो आने वाली है.

राजश्री से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए।

0: पूनम, मैं आज तक नहीं समझ पाया तुम मेरी छोटी से छोटी बात को कैसे जान लेती। तुमने मेरी सर्दी को कैसे पहचाना?
1: जब सर्दी होती है तो हमेशा यूं करते हो।
0: कैसे? एक बार फिर करना।

0: सबको सोम सरोवर बुला लिया, इकट्ठे रहेंगे। काम कितना बढ़ जाता है कोई हमसे पूछे।
1: ओहो, तुम क्यों परेशान होती हो भाई, ला मैं बनाता हूँ मिठाई।

0: कृष्ण कांत जी, बहू नहीं बेटी लेकर जा रहा हूं।
1: हरिश्चंद्र जी, जिस दिन सारे बेटों के बाप आप जैसे हो जाएंगे, उस दिन बेटियां किसी बाप के लिए बोझ नहीं कहलाएगी।

0: राजश्री से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पे क्लिक कीजिए।
1: 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3,

0: वो कैसे लोग थे जिनके प्यार को प्यार मिला।
1: भाई बहुत खूब गोई बाबू, बड़ा शुक्र नवाज है घर आपका। नौकर चाकर भी शायरी करते हैं।
2: मियां शायरी सिर्फ दौलतमंदों की जागीर नहीं। तुम कुछ कह रहे थे बरखुर्दा, चुप क्यों हो गए? कहो कहो।

0: तो फिर उस दिन तुमने मुझे वो दर्द भरी नज़्म क्यों सुनाई? मेरे सोए हुए जज्बात फिर से जाओ,
1: पिछली बातें भूल जाओ मीना।
0: भुला तो रही थी, अपनी जिंदगी को नए सांचे में ढाल लिया था मैंने, दिल को समझा लिया था मैंने, इस दिल को फिर से बेचैन करने के लिए दोबारा क्यों चलाया मेरी जिंदगी में?
1: मैं तुम्हारी जिंदगी से क्या ही कब, तुम खुद ही चली गई थी मेरी जिंदगी से। वो तुम्हारी पहली गलती थी, उसे सुधारने के लिए अब दूसरी गलती ना करो मीना।
0: मैंने कोई गलती नहीं की। हर समझदार औरत को जिंदगी में प्यार के अलावा घरोबार की भी जरूरत होती है, थोड़ी बहुत दौलत के सहारे की भी जरूरत होती है, और यही चीजें पाने के लिए मैंने
1: मिस्टर घोष से ब्याह किया, यानी दौलत के लिए तुमने अपना प्यार बेच दिया।
0: गलत इल्जाम ना दो मुझे। तुमने मेरा प्यार पाया लेकिन तुम गरीब थे, बेरोजगार थे, जिंदगी में सिर्फ शायरी ही नहीं, प्यार ही नहीं, भूख भी है। जब तुम खुद अपना पेट नहीं पाल सकते थे, उस हालत में मुझसे ब्याह करके मेरा भार उठा सकते थे तुम?
1: उसका मौका ही कब दिया तुमने मुझे? जब इंसान के सर पे जिम्मेदारियां आ जाती हैं, वो उन्हें उठाना भी सीख जाता है। अपने आप को धोखा न दोगी ना? तुम दौलत चाहती थी, ऊंची सोसाइटी चाहती थी, सामाजिक नाम और इज्जत चाहती थी, और आज वो तमाम चीजें मिलने के बाद भी तुम बेचैन पछता रही, चाहती हो? तुमने हमेशा अपना साथ दिया, इसलिए मेरी जिंदगी से जाते तुमने मेरी खुशी का ख्याल नहीं, और आज तुम अपने पति की खुशी छीनना चाहती? मीना, जिंदगी की असली खुशी दूसरों को खुश रखती है।